FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं।

यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाई

0: रूसी 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन की राह कभी आसान नहीं होती। सुख और दुख, आशा और निराशा, सफलता और संघर्ष, ये सब जीवन के अभिन्न रंग हैं। ऐसे मोड़ पर यदि कोई साथ सबसे अधिक संबल देता है तो वह प्रभु का अटूट साथ। हर पल प्रभु से यही प्रार्थना।

मांगू या ना मांगू, वो हर हाल में सब दे देते हैं। मेरे आंसू गिरने से पहले ही वो जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे सच्चे सरकार।

इसी के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। प्रस्तुति रहेगी श्रीकांत परगांवकर और अनुराधा मराठे की।

श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आज विक्रम संवत 2083 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम NIIM यूनिवर्सिटी आपके सपने हमारा लक्ष्य सुनिएगा शाम 5:45 पर।

शाम 6:20 पर कार्यक्रम गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से श्लोक 20 से 22 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर नितिन कुमार की। कार्यक्रम अन्नदाता आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7 सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार। कार्यक्रम जय जवान का समय रहेगा शाम 7:30। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनिएगा शाम 8:00। सुबह 7:40 का समय रहेगा हरियाणवी लोक संगीत के कार्यक्रम बाजय नगाड़ा का। गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह 9:30 पर स्वरांजलि और शाम 7:45 पर गुलदस्ता। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनिएगा सुबह 8:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सुन सकते हैं सुबह 10:00। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत सुनेगा कार्यक्रम चांदनी रातें में रात 10:00। शाम 5:00 सुनिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा गुमशुदा व मृतक सूचना। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:45 से 10:00 तक, दिन में 11:00 से शाम 5:00 तक, रात्रि 9:15 से 10:00 तक। ये थी आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता

0: योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुर्गी।

0: तुषार देवतामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी

0: जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है
0: जी।
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी
1: जी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी।
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?

0: हम ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात,
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद सर। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और

0: कंपनी का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला।

0: हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलू? अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले करो।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें बच्चे और मर्द, गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी इस मकान के चारों तरफ भी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी
6: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
5: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी ना जानवर ना खेत ना जंगल।

0: अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए।
1: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। आज के कलाकार हैं ज्ञानी राम।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी आपने सुना हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजा नगाड़ा FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

0: हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
7: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Jiramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: The central government has notified revised

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, विश्वास वो धागा है जो दिलों को जोड़ता है और धोखा ऐसी कैंची है जो बरसों के विश्वास को, रिश्तों को काट देती है। इसलिए जीवन में विश्वास जीतने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास और बिखरा हुआ रिश्ता दोबारा पहले जैसा कभी नहीं बन पाता।

श्रोताओं, चिकित्सक हमारे जीवन के वो सच्चे सेवक हैं जो अपनी मेहनत, समर्पण और सेवा भाव से अनगिनत लोगों को नया जीवन देने का काम करते हैं। इसी सम्मान और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आइए इसी विषय से जुड़ा एक रोचक प्रश्न सुनते हैं। आज आपको बताना है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस महान चिकित्सक और पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस महान चिकित्सक और पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब आप हमें SMS के माध्यम से दीजिएगा। हमारे नंबर 9466021336 पर 8:45 तक।

श्रोताओं, कल्पना कीजिए अगर हमारे आसपास पेड़ ना हो, ना पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे, ना ठंडी छांव मिले, ना शुद्ध हवा हो और ना ही हरियाली की सुकून भरी मुस्कान। ऐसा जीवन कितना नीरस होगा ना, और कितना कठिन भी। पेड़ केवल प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार भी हैं। हमें प्राणवायु देते हैं, वर्षा लाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, और साथ ही साथ असंख्य जीव जंतुओं का आश्रय बनते हैं। इन्हीं अमूल्य वृक्षों के महत्व को समझाने और जन जन तक पर्यावरण संरक्षण की भावना जगाने

करने के लिए ही हर साल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये मनाने की शुरुआत सन 1950 में हुई थी। तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी ने की थी। उन्हें विश्वास था कि अगर हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाए और साथ ही उसकी देखभाल करे तो भारत फिर से हरा भरा हो सकता है। वन महोत्सव को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम है, नहीं, बल्कि ये प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम, हमारी जिम्मेदारी और कृतज्ञता का उत्सव है, महोत्सव है। वैसे तो इस सप्ताह देश भर में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सरकारी संस्थाओं में, सामाजिक संगठनों में, ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण किया जाता है, अभियान चलाए जाते हैं, बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और बहुत ज़रूरी बात, उनकी देखभाल करें। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण और घटते वन क्षेत्रों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे में अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पर्यावरण की रक्षा ही नहीं होती, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित भविष्य पाने की उम्मीद कर सकती हैं। एक बड़ा वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों लोगों को शुद्ध हवा, छाया और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करता है। लेकिन सिर्फ पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, असली जिम्मेदारी तो तब शुरू होती है जब हम उस पौधे को पानी देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और जब तक वो पौधा एक मजबूत वृक्ष नहीं बन जाता तब तक उसको संभालते हैं। पौधा लगाना तो आसान है लेकिन उसे जीवित रखना मुश्किल है और यही सच्ची पर्यावरण सेवा है। क्यों ना हम इस पूरे सप्ताह, वैसे तो पौधा लगाने का कोई समय नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है तो कम से कम इस सप्ताह में एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और साथ ही दूसरों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित करें। एक बात छोटी सी बात है, याद रखिएगा, आज लगाया गया एक पौधा कल किसी बच्चे की सांस बनेगा। आज बचाया गया एक पेड़ आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचाएगा। हम सब मिलकर धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं और यही होगा प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
9: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
8: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
9: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
8: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
10: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
11: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
10: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
12: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
13: श्रोताओं, कहा जाता है कि जहां पर ईश्वर स्वयं नहीं पहुंच सकते, वहां वे चिकित्सक के रूप में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। सचमुच डॉक्टर केवल रोगों का उपचार नहीं करते,

समाज के प्रति डॉक्टरों के अमूल्य योगदान को सम्मान दिया जा सके, और यही है हमारे आज के प्रश्न का जवाब भी। डॉक्टर विधानचंद्र राय जी का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। बचपन से ही वे मेधावी, अनुशासित और सेवा भाव से प्रेरित थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। उनके लिए मरीज केवल एक रोगी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य होता था। वे मानते थे कि एक डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म है रोगी के दर्द को अपना दर्द समझना। चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लंबे समय तक वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधुनिक नगरों के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा भी मिली। उनकी असाधारण सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। यह एक अद्भुत संयोग ही है कि 1 जुलाई को ही उनका जन्म हुआ और 1 जुलाई 1962 को ही उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। मानो उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के नाम ही समर्पित कर दिया था। श्रोताओं, आज जब चिकित्सा विज्ञान निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब हमें उन डॉक्टर्स के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो दिन रात हमारी और हमारे परिवार की सेहत की रक्षा में जुटे रहते हैं। महामारी हो, कोरोना काल का समय, आपदा हो या फिर कोई भी संकट, चिकित्सक बिना अपनी परवाह किए मानव सेवा में लगे रहते हैं। एक कुशल डॉक्टर केवल शरीर का उपचार नहीं करता बल्कि विश्वास, उम्मीद और जीवन को भी नया संबल देता है। डॉक्टर विधानचंद्र राय जी को शत शत नमन और देश के सभी चिकित्सकों को हमारा हार्दिक सम्मान।

श्रोताओं, अब आपको बताते हैं उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया है। नाहन हिमाचल प्रदेश से आप हैं, योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर, योगी मोहला बराड़ा जिला अम्बाला से हैं, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल, गांव ढानी कुतुबपुर हांसी से हैं रामधारी अवाना, ओजस और अनाया, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता और हर्षित, शिलाई हिमाचल प्रदेश से हैं ललिता सिंह और भगवान सिंह, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू, आखली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी, साहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और प्रियांशी, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, ग्राम पंचायत नेहर सभा जिला सरमौर हिमाचल प्रदेश से विनोद तोमर, संजू देवी और ममता देवी, सोलन हिमाचल प्रदेश से टिया और कृष्णा, गांव जाखोद से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, योगेश, दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हैं सरोज सैनी, राकेश सैनी और यादवेंद्र सैनी, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले, गांव खुखनी इंद्री करनाल से हैं संजीव कुमार और अमन कुमार, बोडसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद साहू और बीमा साहू, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह

और पलविशा। मेन मार्केट सोरई ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं संतोष नामदेव, संजना नामदेव और अनन्या। एटा रोड गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम और सरिता गौतम। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चनाताई गुंडाने और हीरामन शेंडे। लाडवा से चांद हिंगरा, ईशु और एमी। जयश्री और सुनील बेंगलोर से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया और अनस। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज और शरीफ नवाज। सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से कविता चावला, भारत भूषण और इशिता पृथ्वी। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुला हुजरे और सबाहत हुजरे। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और वान्या सिंगरौल। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद। डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश यादव और परिधि सुरोशो। ग्राम पीपरलोट सर गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा। रश्मि झरना राजकोट गुजरात से। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला। सुफिया हुजरे चांदबी हुजरे, किरत हुजरे सांगली से। गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और गरिमा बगड़िया। राजेश कुमार मेहरा क्लासिक रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से। सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन, तोशन सेन और विनायक सेन। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और उर्मिला जायसवाल। सुधा मूर्ति के हाली बेंगलोर से। मागीराम सैनी, पूनम सैनी गांव प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन और हेयांश कुमार चंदन। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग और विकास गोयल। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्या कुमारी। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन और दीपक। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, योगेश गुजराती। गांव भाणा भ्रामनावाला नरवाना से मेघराज शर्मा। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, लुबना अंसारी मास्ट और अनवर मास्टर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे और अंजलि करवा। सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा और सुनैना हुड्डा। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे। सुंदरनगर हिसार से मोनिका गुज्जर, पंकज गुज्जर और कीरत। बड़वाहा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और आनंद जोशी। प्रवीण शास्त्री गांव पिलनी जिला कैथल से। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज संदीप दत्ता और बंसी। पटना बिहार से फातिमा उल्हा फकीर, सोनम उल्हा फकीर और आसमा

चूल्हा फकीर। ग्राम पंचायत बटेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा। वंडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और लवली। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा और इंदु। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण भाटे और संदीप भाटे। पुराना तालाब डुमराव से वली उल्हा अंसारी और राज एसडी अंसारी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम और सद्दाम सोनी। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढिंगरा, कृतिका विशु और विजय। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल और साहिल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। ग्रामनगर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज वंश और भुवेश कुमार कंबोज। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, ग्राम कदुआपड़ा, जिला जगत सिंहपुर उड़ीसा से। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। नरेश मल्होत्रा नीटू, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से। नई बस्ती गंजडुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी। बलारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और समीक्षा भारशंकर। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। दोंदी लोहरा से तुषार डोम, राधिका डोमना और अनीता बेलदार। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी और शंटी। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल। रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी साहू और मनीष साहू। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। रेलवे रोड गंजुनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और फातिमा गाजी। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप और राजपाल पंकज। कासगंज उत्तर प्रदेश से अनुपमा, कुसुम और अपूर्वा। हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे सांगली से। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा और अनामिका शर्मा। महाराष्ट्र से वृंदा रामटेके, पूजा रामटेके और पोपो रामटेके। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानो। बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा और ख्याति। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण और शमशेर भ्याण। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। खंडवा से कुमारी दुर्गा तमुरिया, गौरव तमुरिया और कुमारी प्रभा बेलदार। एसएम जावेद गुमला

झारखंड से, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और वर्षा सुमन, बालाजी चौक यवतमाल से ओटी श्रीवास, मीना श्रीवास और पोपो रानी, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी और लड्डू कुमारी, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, गांव उगाला, जिला अंबाला से, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और मास्टर अल कबीर, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर अबारी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी और लीबा मलिक, बिहार स्टेट से डब्ल्यू वली बेलदार, उल्हा वली बेलदार और सोनम वली बेलदार, प्रबुद्ध मंडल फ्रेजरपुरा अमरावती से महेश रामटेके, ज्ञानेश्वर रामटेके और निर्मला रामटेके, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा और पूजा परिहार, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशो, सुषमा सुरोशो और मायरा सुरोशो। ये थे उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब देकर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई।

श्रोताओं, पुराने समय की बात है, एक बार एक किसान की फसल कभी बारिश की वजह से, कभी धूप की वजह से और कभी किसी और वजह से पनप ही नहीं पा रही थी। इससे किसान बहुत दुखी था और लगातार भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था और भगवान को कोस भी रहा था। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। किसान ने थोड़ा गुस्से में भगवान से कहा कि प्रभु, आपको खेती की जानकारी नहीं है, आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप कर देते हो और कभी ठंड बढ़ा देते हो, और इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है, मेरा बहुत नुकसान होता है। किसान ने आगे कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दें कि जब मैं चाहूं तब बारिश हो, यानी कि कुल मिलाकर जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। इसके बाद किसान ने गेहूं की खेती शुरू की। जब वह बारिश चाहता था बारिश होती थी, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती थी तब धूप निकलती। उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था और वो बहुत खुश था कि इस बार मेरी फसल तो बहुत अच्छी होगी और फसल बेचकर मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। किसान बहुत खुश था। जब फसल काटी गई तो बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। अब किसान फिर से दुखी और भगवान के सामने रोता हुआ बोला, भगवान एक बार फिर से प्रकट हो। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया और इसी वजह से ये बालियां खोखली रह गई। फसल तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह से सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है ना, ठीक उसी तरह फसलों को भी संघर्ष करना पड़ता है और ये उनके लिए जरूरी है। श्रोताओं, कहने की बात है कि व्यक्ति को परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, परेशानियों का सामना करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। यही था हमारा आज का विचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे अभिजीत की आवाज में।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
4: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
5: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
4: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
5: तो देर किस बात की,

0: अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज, अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए हंसराज हंस की आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

उसकी बर्मा बॉस वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन, ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था। सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी हुआ।

आप सभी का दिल ऐसे ही गाएगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बारिश की संभावना, क्योंकि पहले से बताया जा रहा था कि बुधवार से बारिश दिल्ली में शुरू हो सकती है और मौसम भी वैसा ही बना हुआ है। अभी राइट नाउ मैं नहीं कह सकती कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता चल पा रहा, लेकिन आज पूरे दिन भर बारिश का सीन है और ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे ऐसी संभावना है और आने वाले कुछ दिनों में भी आप बारिश से झमाझम बारिश का आनंद लेने वाले हैं। दिल्ली वालों की बात करी, अगर अभी करंट टेम्परेचर की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। ये है हमारे आज के तापमान का हाल और आप सभी के लिए दिल के तराने गाने नए पुराने में एक और रॉकिंग नंबर।

ऑलराइट, अब मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो प्रोग्राम जो आप मेरे जाने के बाद आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। 10:02 का समय मैचलेस म्यूजिकार का पूजा आनंद रहेंगे आपके साथ। रश्मि गुप्ता के साथ आप सुनेंगे बॉलीवुड रॉयल्स 11:02 पर, और पूजा रहेंगे आपके साथ प्ले इट कूल में, समय रहेगा 12:02। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले रही थी आप सभी से इजाजत। आप बने रहे आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहां पर खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: तो टल
1: गया। तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सागर और ज्ञान दोनों की कोई सीमा नहीं होती। जितना गहरा हम उतरते जाते हैं उतना ही अधिक पाते हैं, लेकिन अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो तरक्की भी वहीं रुक जाती है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहो। और एक चीज़ और बहुत ही खास, ना तो सीखने की कोई उम्र होती और किसी से भी सीखा जा सकता है, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बूढ़ा। इसी विचार के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं आपको ये गीत। उससे पहले पूरे 60 मिनट हैं आपके पास हमसे जुड़ने के लिए फोन लाइन के माध्यम से। उसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर, वही जाना पहचाना 0174-221-322। तो जल्दी से फोन उठाइए और मिलाइए नंबर, कीजिए हमसे ढेर सारी बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। और तब तक आनंद लीजिए इस गीत का और हम इंतजार कर रहे हैं अपने श्रोताओं की कॉल्स का।

0: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? हेलो नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम रामदत्त बात कर रहा हूँ। मैम
0: रामदत्त है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं रामदत्त जी?
1: मैम कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ।
0: कुरुक्षेत्र से, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम।
0: जी क्या करते हैं रामदत्त जी?
1: मैं जॉब करता हूँ मैम।
0: जॉब करते हैं तो सरकारी महकमे में है या फिर प्राइवेट जॉब है?
1: प्राइवेट जॉब करते हैं मैम, कृष्णा म्यूजियम में।
0: कृष्णा म्यूजियम में, अरे वाह। तो बहुत, अब अगर बहुत टाइम हो गया फिर तो सब चीजें अच्छे से देख ली होंगी, लेकिन फिर भी जो भी जाता है म्यूजियम में, चाहे वो एक बार दो बार तीन बार पहले भी गया हो, लेकिन वहां जाके जो एहसास होता है, जो अनुभूति होती है, उसे शायद हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते।
1: ठीक है मैम, वो तो पता क्या जो भी हो जाता है ना, बहुत मतलब बहुत
0: मैं वही कह रही हूँ ना कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं वो एहसास बयां करने के लिए।
1: हाँ जी मैम। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम।

0: अब देखिए ठीक आ रही है, ऐसे ही लग रहा होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। गीत बताइए आज कौन सा सुनेंगे
1: मैम? राधे
0: जी, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है, थैंक यू मैम
0: जी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, मैं कुंडलवाड़ी नांदोर महाराष्ट्र डॉक्टर राम गंगाधर सावंत
0: जी। गंगाधर जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी, आप कैसे?
0: हम भी बहुत बढ़िया। और मौसम कैसा है वहाँ पर?
1: मौसम तो मतलब बारिश चालू है दीदी।
0: बारिश चालू है मतलब गर्मी से राहत है?
1: हाँ, राहत मिल गई।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है
1: दीदी।
0: हमारे पास, हम वेट कर रहे हैं कि आज शायद दोपहर बाद बारिश हो जाए। वैसे मौसम ठीक हो गया, आज इतनी गर्मी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: लोफर फिल्म का।
0: लोफर फिल्म से कौन सा?
1: मौसम बड़ा।
0: अरे वाह, वहाँ पे बारिश हो गई, मौसम सुहावना हो गया और आपने गीत भी मौसम से संबंधित ही लिया।
1: जी जी जी,
0: बहुत बढ़िया। चलिए आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं।
1: दीदी कुछ मिलती है नाम?
0: हाँ जी बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे गौतम जी रावल, तुकाराम जाधव जी, भगवान सिंह जी, राजेंद्र गंगवार, चारू अंसारी, सुनील झा, दिलीप पौजा, सुरेश जी, पतंग जी
0: जी, अभी सभी मित्रों के साथ मिलकर आनंद लीजिए। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
0: जी।

श्रोताओं, इतिहास केवल किताबों के पन्नों में नहीं बसता, वह तो हमारी मिट्टी में भी सांस लेता है और हरियाणा की धरती भी ऐसे ही गौरवशाली विरासत की साक्षी है। यहां पर स्थित हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल हमें लगभग 5000 साल पहले उस विकसित समाज से परिचित करवाते हैं जिसने नगर नियोजन, कृषि, व्यापार और संस्कृति के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। अगर बात करें हिसार जिले के राखीगढ़ी की, कौन नहीं जानता। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से ये एक है। यहां से सुव्यवस्थित सड़कें, पक्के मकान, जल निकासी प्रणाली, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और मानव कंकाल मिले। फतेहाबाद में तो कई स्थल ऐसे हैं जो हड़प्पा संस्कृति की पहचान कराते हैं। बनावली, बिरडाना, कुनाल। बनावली से तो मिट्टी के बर्तन, मनके, तांबे के औजार और कृषि के सबूत प्राप्त हुए और बिरडाना को सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में गिना जाता है। यहां से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। और अगर कुनाल की बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से चांदी के आभूषण, तांबे के उपकरण और भी बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं मिली।

0: हड़प्पा काल के मकान मिट्टी के बर्तन और धातु के उपकरणों के विशेष तो भिवानी जिले में स्थित मीथाथल से भी प्राप्त हुए। अगर बहुत दूर नहीं जाते कैथल जिले की बात करते हैं तो बालू। जी बालू सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण केंद्र है और यहां से कृषि भोजन और दैनिक जीवन से जुड़े बहुत से प्रमाण प्राप्त हुए। रोहतक में एक है फरमाना। फरमाना से हड़प्पा काल का विशाल कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान है तो मानव कंकाल भी मिले, आभूषण और भी बहुत सारे पुरावशेष मिले जिन्होंने उस समय के सामाजिक जीवन को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के 1000 से ज्यादा स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं जिनमें से अधिकांश घग्गर यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी के पुराने प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं और यही कारण है कि हरियाणा को सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना गया है। हमारे श्रोता जो इन जिलों से संबंध रखते हैं शायद वो हमें अपनी बातचीत में बताएं कि और कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई और कौन कौन सी चीजों के वो साक्षी हैं। तो देखते हैं अब हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़े हैं। हेलो हेलो।
1: राम राम बहन जी। राम राम।
0: राम राम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: पप्पू राम घाट।
0: जी पप्पू राम घाट जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बहन जी, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया।
1: और हमारा पास
0: जी सब बहुत बढ़िया। आज तो काफी समय बाद आपकी आवाज सुनने को मिली। एक चीज और जो बहुत अच्छी लग रही है, जो हमने अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट की थी कि 15 दिन के अंतराल के बाद फोन मिलाइए, तो हमारे ज्यादातर श्रोता इस बात को मानते हैं और अपने आप ही वो 15 दिन का अंतराल देने लग गए। ये बहुत अच्छी बात है।
1: मानना भी चाहिए, नए श्रोता जुड़ते हैं।
0: नए श्रोता जुड़ते हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो शायद श्रोताओं को ऐसा लगा हो कि हमने थोड़ी सी सख्ती की, कई बार उन्होंने कॉल किया लेकिन हमने कार्यक्रम में उनकी कॉल शामिल नहीं की, लेकिन अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अधिकांश श्रोता ये बात मानते हैं और अपने आप ही 15 दिन के बाद ही वो फोन करते हैं। बहुत अच्छी बात,
1: मानना भी चाहिए।
0: जी जी जी। चलिए पप्पू रामगढ़ जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज मुझे आपका अर्जुन का सुना दीजिए।
0: जी गीत के बोल बताइए। जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

बोला गोपाली बहना, इसको कुछ ना कहना, इससे दूर ही रहना, छेड़ो यूं ना छेड़ो, छोड़ो पीछा छोड़ो, बहना को न सताओ।

तेरे जैसी बस एक तू है हाय, तेरा क्या कहना। तेरे जैसी बस एक तू है हाय, तेरा क्या कहना। कितनी

0: तेरी बहना जैसी न होगी किसी की रे बहना,
1: ओ मेरे भैया जैसा न होगा किसी का रे भैया,
0: मेरी बहना जैसी न होगी।

0: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
1: 8708903436।
2: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।

0: Sì. Allo? Allo?
1: नमस्ते मैडम.
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं चंदौड़ी गांव से खुर्शीद अहमद बोल रहा हूँ मैडम.
0: खुर्शीद अहमद जी, आपका स्वागत है. कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम.
0: घर परिवार में सब?
1: सब ठीक है मैम.
0: चलिए, अच्छी बात है कि सब कुशल मंगल होना चाहिए. हाँ जी,
1: ब्रीड बरसात हो रही है, बढ़िया.
0: चलिए, अच्छी बात है. बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब उससे राहत मिल गई.
1: बहुत राहत आई
0: जी. ये जो बरसात थी, बारिश थी, इसका इंतजार तो मनुष्यों को भी था, पशु पक्षियों को भी था और फसलों को भी था.
1: वातावरण का तो सब पे असर पड़ा ना?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, जो पर्यावरण में इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, तो उसका असर है कि इस बार मॉनसून थोड़ा लेट है.
1: जी
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: गीत दाता फिल्म का है जी, बाबुल का घर गोरी.
0: जी, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं. हाँ जी बिल्कुल लीजिए.
1: हेलो
0: जी, बिल्कुल लीजिए.
1: ये गांव सीनी तला से है जी, जय सिंह कंबोज और जयपाल विमान
0: जी. आनंद लीजिए इस गीत का. कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद.
1: थैंक यू मैम.

श्रोताओं, फुटबॉल केवल 90 मिनट का खेल नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष, अनुशासन और सपनों की कहानी भी है। मैदान पर दौड़ता हर खिलाड़ी केवल अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि अपने देश के सम्मान और करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों के लिए भी खेलता है। ऐसे में जब भी कोई खिलाड़ी अपने असाधारण प्रदर्शन से दुनिया का दिल जीतता है तो उसके लिए कुछ विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स। आज बात करते हैं इन्हीं विशेष पुरस्कारों के बारे में। गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिससे पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि बेस्ट प्लेयर चुना जाता है। यह पुरस्कार केवल गोल करने वाले खिलाड़ी को नहीं मिलता बल्कि उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा, नेतृत्व, खेल भावना, पासिंग, रणनीति और प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा हो। अगर सरल से शब्दों में कहें तो गोल्डन बॉल पूरे टूर्नामेंट में सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान है और गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल किए हों। अगर दो या दो से ज्यादा खिलाड़ियों के गोल बराबर हों तो सबसे अधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर फिर भी बराबरी रहे तो कम समय में ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को विजेता माना जाता है और यह पुरस्कार उस खिलाड़ी

खिलाड़ी की गोल करने की अद्भुत क्षमता का सम्मान है, गोल्डन ग्लव्स। जी हाँ, ठीक सोच रहे हैं आप लोग। फुटबॉल में गोलकीपर टीम की आखिरी और सबसे मजबूत दीवार होता है। गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार उस सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बचाव, बेहतरीन प्रदर्शन और अपनी टीम को कई बार हार से बचाया हो। अगर संक्षेप में इन तीनों पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन बॉल सिखाती है कि उत्कृष्टता केवल गोल करने में नहीं बल्कि पूरे खेल को प्रभावित करने में है। गोल्डन बूट्स बताते हैं कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही अवसर का लाभ उठाना सफलता की पहचान है। और गोल्डन ग्लव्स हमें याद दिलाते हैं कि कई बार सबसे बड़ा नायक वो होता है जो चुपचाप टीम की रक्षा करता है। तो जब भी आप कभी फुटबॉल का मैच देखें तो सोचिएगा कि ये विशेष पुरस्कार किसे मिलने वाले हैं।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: कुमार भल्लाजराम।
0: हाँ जी,
1: संदीप भल्लाजराम जिला सहारनपुर।
0: संदीप बोल रहे हैं जिला सहारनपुर से
1: जी।
0: जी संदीप जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, आप सुनो।
0: जी हम भी ठीक हैं बिल्कुल। क्या करते हैं आप?
1: खेती
0: का काम करते हैं। तो इस टाइम बारिश हो गई? आज ही हुई है, तो खेती के लिए तो अनुकूल है
1: जी।
0: खेती के लिए तो बढ़िया है ना बारिश?
1: जी
0: चलिए बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे? सुहाग फिल्म से तेरी रब ने बना दी जोड़ी। जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: रखबीर बोल रहे हैं। लोग ठीक है?
0: रखबीर
1: जी,
0: आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, ठीक ठाक। आप सुनो
0: जी। हम भी सब बहुत बढ़िया। क्या करते हैं रखबीर जी? खेती बाड़ी का काम?
1: नहीं, ये दुकान है।
0: दुकान है, चलिए।
1: करने की?
0: किसकी? किराने की।
1: हाँ जी
0: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। समय कम
1: है, 6 बजे रेडियो चल जाता है, रात को 10 बजे
0: तो इतनी लंबी ड्यूटी देते हैं दुकान पे।
1: हाँ जी, जी।
0: चलिए अच्छी बात है। फरमाइश बताइए अपनी।
1: सन्यासी फिल्म का गाना सुना जाए।
0: सन्यासी फिल्म से कौन सा गीत?
1: कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान।
0: जी जी जी, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे अपनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पीलू जी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजय शाह का सर्वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनॉय को आपने सुना एल्बम थी मेड इन इंडिया, अलीशा चिनॉय बिड्डू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिड्डू की तर्ज थी।

0: न्यायालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की।

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मजरू सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देवबर्मन का। फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: गोपी नैयर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: मून की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

गलियों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

जाने ओ जाने जरा नजरें मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर।

खरे खरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बसा दूं मैं, पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको।

कुमार बरवंकवी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में ये आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आप को लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहाँ भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर, जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहां कुछ रहने भी दें, जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जले तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियां होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलतफहमियां जो होती हैं वो होती हैं, और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलतफहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में

तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

0: वीबीजीराम जी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। अम्बाला जिले के गांव धनेड़ा में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बच्चे निर्भय सिंह को आखिरकार आज अल सुबह लगभग 3:30 बजे बोरवेल से निकाल लिया गया, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका। हमारे संवाददाता ने बताया कि बोरवेल से निकालते ही उसे तुरंत अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ऋषिपाल ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने निर्भय को बाहर निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पंजाब से भी एक टीम बुलाई गई, किंतु वह जिंदगी की जंग हार गया। निर्भय के चाचा हरिंदर सिंह की माने तो बोरवेल को खुला रखना साफ तौर पर लापरवाही है और इस मामले में वह कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। जींद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल 2 मूक बधिर बच्चों को बेहतर उपचार के लिए 11,90,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक सौंपे गए। उप सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. रमेश पांचाल ने अपने कार्यालय में गांव मालवी निवासी 4 वर्ष 5 माह की जागृति और गांव धनकड़ी निवासी 5 वर्ष 7 माह के शिवम कुमार एवं उनके परिजनों को उपचार संबंधी यह वित्तीय स्वीकृति पत्र सौंपे। इन दोनों बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट के लिए प्रति बच्चा 5,95,000 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिससे अब इनका पीजीआई चंडीगढ़ में पूर्णतः निःशुल्क और सफल ऑपरेशन हो सकेगा। डॉक्टर पांचाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों में जींद जिले के बच्चों के इलाज पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें दिल में छेद से पीड़ित करीब 135 बच्चों का इलाज भी शामिल है। हरियाणा सरकार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों एवं किसानों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनर् आवंटन, कन्वेयंस डीड जारी करने, बिक्री की स्थिति में संपत्ति का पुनर् हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी प्रकार यानी नो ड्यूज प्रमाण पत्र तथा मॉर्गेज के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। निर्विवाद मृत्यु के मामले में संपत्ति का पुनर् हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे फॉर्म जारी करने के लिए 1 दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार अधिकांश सेवाओं के लिए संबंधित सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि जे फॉर्म जारी करने के लिए मंडी सुपरवाइजर अथवा सहायक सचिव तथा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए मंडी समिति सचिव को नामित अधिकारी निर्धारित किया गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज।

जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है, गलतफहमी को खुशफहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात ताबीरें बदगुमानी इबारत ऐसी सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे, तो देखते हैं और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तो जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे ये दिल ना होता बेचारा रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे रंग महल हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके शबनम रेशम की डोर दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से और लाखों ही निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है, और कई बार आपको भी बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती होंगी, कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफर पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे जरूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है? तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती है। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच ना हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है। कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहां खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ऐसा, मुझे याद पड़ता है मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है, आपका जवाब इन गाने में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शम्मी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है। अजब बंदिश, अजब आजादी के दरमियान हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बुद्रा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला, यूं ही वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे, और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलतफहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलतफहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलतफहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है इसे पहचानने की।

जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती है, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुश फहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुश फहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है, उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है। इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं,

अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समुद्र जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

श्रोता, और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलत फहमियां होती हैं। क्या आपको हुई है?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखती है कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं ये कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलत फहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थी। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो मोहन पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे, तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेलथी देवानंद अशोक कुमार वैजयंतीमाला पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंतीमाला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

दो सहेलियां हैं वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलत फहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलत फहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

की कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोताओ दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चिच्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

जयकर और जरीना बहा पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्मों से। आवाजें थी यशुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपके सभी कमेंट्स के लिए आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुनीला सफर यहीं संपन्न होता है श्रोताओं।

0: increase wages under Viksit Bharat Ji Ram Ji Act become effective from today, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of Army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 the entire round of 16. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा एक रिपोर्ट
3: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई

0: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के

0: का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय

0: विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: Including emergency and general use medicines.
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत

0: दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: एक रात की सुनकर गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुर

0: अमरापुर कर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
2: जी
1: नमस्कार।
2: नमस्कार आरती, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ का मन का मौसम तो वैसा ही है।
1: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
2: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना।
1: जी हाँ, बिल्कुल
2: हाँ। और बहुत अच्छा लगता है, अपना एक आनंद अलग ही है आरती
1: जी। बिल्कुल,
2: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी, मुझे तो याद है।
1: बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
2: उसका एक अलग ही मजा है।
1: बिल्कुल,
2: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
1: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
2: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
1: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
2: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
1: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
2: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
1: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
2: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता है, कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया
2: मैं करके
1: पीछे खींचे। आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में।
2: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
1: जी हाँ,
2: है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है,
2: पीछे भी खींचती है। आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
2: अच्छा,
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं, उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस

0: सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
1: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है? कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया?
0: जी बिल्कुल, आप बताइए।
1: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, एक गीत सुन ले। और
0: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर
1: व्यंजन लेके आई है।
0: बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
1: गर्मा गर्म पकौड़े मिली होती है। बिल्कुल सही कहा
0: जी।
1: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं? कई तरह के पकौड़े,
0: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
1: कौन से बेसन के, और
0: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा लें।
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सिक्योर सका और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही

0: फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते।
1: बिल्कुल।
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना। कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक है वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है। तो वो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ, तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी, अगर

0: कोई हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही ज़रूर की होगी या आपको तलाब हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे श्रोता तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं।
1: बिल्कुल, अच्छा आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन।
1: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
0: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
1: बहुत तरीके हैं खाने के,
0: बहुत अच्छा
1: तो
0: लगता है।
1: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
0: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
1: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा?
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो है डॉक्टर है। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं,

0: डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें तो हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिरदर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण

0: के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती ना उससे हाँ, थोड़ा अलग होता है, ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
1: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम, जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
0: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़ बेल कलियां पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
0: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
1: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
0: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
1: अच्छा
0: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
1: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
0: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है
1: कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
1: बिल्कुल।
0: ये हाथ से और मेहनत से बनाई
1: जाती है। और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
0: बिल्कुल। बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
0: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली है।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन

0: बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है, शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है, हम वो कर सके, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं, या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं, उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। फिर हमें कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता
0: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है, वो कोई भी प्रतियोगिता।
0: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं, वहां से हारते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, जब भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है, वो हमें
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल। इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तमन्ना की जी है। हाँ। अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे है, भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने। तो बात करते हैं, पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात,
1: बहुत शानदार,
0: बहुत शानदार। ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए और

0: चावल का आटा ले लीजिए दो बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए। और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें एक बड़े उस पर एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज आलू और पालक ले लें, इसमें नमक अदरक लहसुन का पेस्ट कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें। कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें। अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
1: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखते हैं कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गरम होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें मतलब रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सही।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में

0: हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
0: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
0: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
0: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
0: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
0: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
0: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं ना कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिए ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश,
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे

0: निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी
1: जी। तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ
0: जी? ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी।
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग्य लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा
0: जी? एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी
1: मिला।
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है, ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग्य जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग्य को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग्य संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग्य संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी, जी।
1: तीसरा जो है वो अंधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3-4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें

0: लिखता है, और साहित्य के सन्निधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी,
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी,
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था। लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं। समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है, और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी,
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है, और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ, और मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था। धीरे धीरे

0: हास्य का अस्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
1: जी,
0: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत, इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी,
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं हो पाया। जी,
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है,

0: तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है।
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं।

0: आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती है मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग, मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है, इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूँगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुँचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के ज़माने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे, उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करो।

0: में, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप है ना, निश्चित रूप।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों के एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं
1: जी।
2: मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लेखा-जोखा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने इंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आगे, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं, आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
2: जी जी जी जी।
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
2: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।

0: मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, वन महोत्सव सप्ताह, डॉक्टर सीबी रॉय जयंती और चंद्रशेखर जयंती के बारे में। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

शाम 6:20 पर आप सुन पाएंगे गीता संदेश, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे गीता के 7वें अध्याय के श्लोक 20 से 22 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर नितिन कुमार की।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें। इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाने का प्रयास करेंगे जिनकी फरमाइश आप हम तक लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से।

और अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंखें का ये गीत।

0: मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तमन्ना से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

आज का ये वाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और डॉक्टर बीसी रॉय जयंती के बारे में। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वाणी कार्यक्रम इस चर्चा के साथ। दोस्तों, अगर हम बात करें, आज है 1 जुलाई और भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 1991 को हुई थी। डॉक्टर बीसी रॉय, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 1962 को इसी तारीख को उनका निधन भी हो गया था। चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 4 फरवरी 1961 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था, उससे इनको सम्मानित किया गया था। और ये जो दिन है, महान चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य को ये समर्पित है। ये दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान, उनके अथक परिश्रम, मरीजों की निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का बहुत महत्व है। यह डॉक्टरों द्वारा मरीजों को दिए जाने वाले जीवन दान और उनकी कड़ी मेहनत के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक अवसर है। इस दिन स्वास्थ्य सेवा के महत्व को उजागर किया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई प्रगति पर भी चर्चा की जाती है। तो हम जब भी किसी अस्पताल जाएं तो वहाँ जो डॉक्टर हमें दिखाई देते हैं तो उनका पूरा पूरा सम्मान करें, क्योंकि वो हमारा जीवन बचाते हैं। दोस्तों, अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
0: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
4: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
0: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।

0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहनगर कुरुक्षेत्र
1: 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
0: श्रोताओ, अब भी हमारी अगली चर्चा वन महोत्सव सत्ता। श्रोताओ, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में राष्ट्रीय वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और देश में पेड़ों की संख्या को बढ़ाना है। इसकी जो शुरुआत है 1950 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर KM मुंशी ने की थी। और जुलाई के पहले सप्ताह में ये क्यों मनाया जाता है, इसका एक खास कारण है कि भारत में इसी सप्ताह में मानसून शुरू होता है, यानी बारिश का मौसम शुरू होता है, और इससे लगाए गए पौधों के जीवित रहने और तेजी से बढ़ने की जो संभावना है वो तेजी से बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में अगर पौधे लगाएंगे तो बड़ी तेजी से सूख जाएंगे, लेकिन अगर बरसात के मौसम में पौधे लगाए जाएं तो साथ साथ उनमें बारिश का जो पानी है वो एक बहुत अच्छी खुराक का काम करता है और पौधे जल्दी इसमें बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य है, जंगलों की कटाई को रोकना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। वन महोत्सव के दौरान विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में वृक्षारोपण अभियान, यानी पेड़ लगाने के जो कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं, और इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों के जरिए लोगों से अपने घर या आसपास के क्षेत्र में फलदार और छायादार पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प जो है वो लिया जाता है। और सभी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके और जो हमारा आसपास का जो पर्यावरण है वो अच्छा बन सके। अब आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम नीलम यूनिवर्सिटी, आपके सपने हमारा लक्ष्य है।

0: Hello everyone, and I'm your host Ankita, and welcome to Northern Institute of Integrated Learning and Management University. And today we have Dr. Rajendra, Director of Admission, with us for talking about the vision career opportunities of NIILM University. Hello sir.
1: Thank you Ankita. पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई. आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आवाज उन बच्चों तक पहुंचा रहे हो जिन बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं कि कैरियर में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है, या फिर अदर जो डिग्निटीज यूनिवर्सिटी तक पहुंचती हैं, उन लोगों की आवाज, उन लोगों की बातें उन बच्चों तक पहुंचाना में आप मदद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: What makes our university different from the another universities? की ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है?
1: आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना, लोग जब स्टडी करने जा रहे हैं कॉलेजेज में या इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, परसेंटेज नंबर्स के पीछे. स्कूल्स हो या कॉलेजेज हो, वहाँ पे परसेंटेज और नंबर्स के पीछे दुनिया का गोल हो गया है. जो कि मेरे को लगता है नंबर्स के पीछे दुनिया घूम रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आज की एजुकेशन होनी चाहिए जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को काम करना आना चाहिए. आप कितने ही डेटा उठा के देखिए कि लोग ग्रेजुएट होते हैं. अगर मैं कुछ थोड़ा सा पीछे चला जाऊं 2023-24 सेशन वाले में, तो अगर MSRD का डेटा उठाऊं तो अप्रोक्स 10 मिलियंस लोगों ने ग्रेजुएशन किया और उसमें से 8 मिलियंस लोगों को जॉब नहीं मिला. ये बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में. NIILM उसी के ऊपर लगा हुआ है. उसी जो 80% बच्चा है जिनके पास जॉब नहीं है, उन लोगों को कैसे उन जॉब्स के प्रति बनाया जाए, उन जॉब के अकॉर्डिंग बनाया जाए, उनके ऊपर काम कर रहा है.
2: बिसाइड्स फ्रॉम स्टडी या बिसाइड्स फ्रॉम हम कह देते हैं कि एक करियर ऑप्शन है बच्चों के लिए, तो ऐसा क्या है यूनिवर्सिटी में कि बिसाइड्स फ्रॉम द स्टडी बच्चे यहाँ पे और क्या अपॉर्चुनिटीज?
1: बहुत अच्छी बात कही अंकिता आपने कि जैसे कि बिहाइंड द स्टडी क्या चल रहा है, उसी के ऊपर मैंने शुरुआत आपसे करी थी. जैसे कि बच्चे के पास एजुकेशन है, दे आर द ग्रेजुएट, बट उन लोगों के पास काम नहीं है. उसी को मद्देनजर रखते हुए NIILM यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इंडस्ट्रीज कोलाबरेशन की. हमारे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम लोग, वो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम चल रहे हैं. बेसिकली उन लोगों को लैब्स में जब वर्कआउट करते हैं वो प्रैक्टिकल पे जाते हैं, तो बेसिकली हम BA नहीं करा रहे हैं. BA के साथ उनके पास क्या स्किल है, तो ऐसे ही हमारे सभी बच्चे किसी न किसी फील्ड में अपने अपने एक्सीलेंसी के थ्रू कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और उनको वो इंडस्ट्रियां साथ दे रही हैं. ऐसे ही हमारी सारी इंडस्ट्रियां

0: तो कोलाबरेटिव में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में, या फिर आपके होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वो सारी कंपनीज जो है हमारे यहाँ पे बच्चों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देती है। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, बच्चे वहाँ जाके काम करते हैं उनसे और वो सीखते हैं कि काम कैसे हो रहा है, और वही हमारा बेसिक स्टडी का मूड है।
1: सर, एकेडमिक के अलावा NIIM यूनिवर्सिटी में लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, क्या इन सब स्किल्स के बारे में भी बताया जाता
0: है? बिल्कुल, NIIM यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी और इंडस्ट्री बेस पे ही हम लोग फोकस्ड है। बच्चों के बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अपने कल्चर एक्टिविटीज, अगर हम कल्चर्स की बात करें तो हरियाणा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो प्रोग्राम नहीं कर रही हैं, वो प्रोग्राम हरियाणा में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपने पिछले साल अगर आपने देखा भी होगा तो 40 कॉलेजेस ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारी टीमें दिल्ली तक, पंजाब तक, देहरादून तक हमारी टीमें कम्पीट करके आई और प्राइजेज जीत के लेके आई हैं। और स्पोर्ट्स एकेडमी की हम बात करें तो हरियाणा में जो क्रिकेट ग्राउंड हम बात कर रहे हैं, वो हरियाणा में ऐसी क्रिकेट ग्राउंड BCCI के जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया है वो किसी के पास नहीं है। बैडमिंटन है, जूडो है, कबड्डी है, हमारा गेम शूटिंग्स है, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग बना रहे हैं, मीन जहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब, कल्चर क्लब, स्ट्रेंथ क्लब, एक्टिविटीज, बहुत सारी मोर एक्टिविटीज जो यहाँ पे ऑलरेडी रन कर रहे हैं, और बच्चे आके उसको अगर जब विजिट करेंगे तो उनको देख भी सकते हैं अपने आप।
1: सर, AI कैंपस कहा जाता है NIIM यूनिवर्सिटी को, तो ऐसा क्या डिफरेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में?
0: देखिए, आज के टाइम में अगर आप बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हर जगह यूज हो, जैसे लाइक हम अपनी एजुकेशन की बात करें, जब हम ग्रेजुएट होते थे तब बोलते थे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कंप्यूटर आना चाहिए, अगर आज पढ़े लिखे हैं तो AI आना चाहिए। उसमें अगर NIIM की बात करें तो NIIM क्या कर रहा है, आज आप अंकिता बाहर देखें, बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं जो BCA कर जाते हैं, BTech कर जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और अपना रिज्यूम बनाने कहां जाते हैं वो लोग, CSE सेंटर। कि एक बच्चा जिसने BCA कर लिया, BTech कर लिया, और वो बच्चा रिज्यूम बनाने के लिए एक CSE सेंटर जा रहा है जो कि 10th क्लास है। तो बट हम AI कैंपस की जो आपने बात करी उस पर हम लोग बच्चे को क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को अपना एक ऐप देते हैं, उस बच्चे को AI रिज्यूमे बिल्डर्स, AI इंटरव्यूअर, बच्चा अपनी क्लासेज हैं, क्लासेज जब वो पढ़ा है उसमें क्लास में जो भी टॉपिक उसने पढ़ा है उसी का उसी दिन वो टेस्ट दे सकता है कि उसने कितना पढ़ा है, होल यूनिट का देना चाहता है पूरी यूनिट का टेस्ट दे सकता है, पूरे सेमेस्टर का देना चाहता है पूरे सेमेस्टर को देख के देख सकता है, उसका वर्चुअल लैब्स, बहुत सारे लाइब्रेरी है। देखिए आप देखेंगे, आप बच्चा जब लाइब्रेरी जाता है तो लाइब्रेरी में जाकर घंटों तक उसको पता नहीं लगता कौन सी बुक्स कहाँ रखी है, हमारे ऐप से ही बच्चा अपनी बुक्स को अपने उस पर ही देख सकता है कि उसी टाइम ये बुक्स अवेलेबल है या नहीं है, जो भी राइटर उसने पढ़ना है उस राइटर का नाम लिखेगा तो बुक्स उसको अवेलेबल हो जाएगी। तो मींस ये वाला AI ऐप और स्मार्ट क्लासरूम्स, एप्पल लैब, iOS लैब, रोबोटिक लैब्स, ये सारे हमारे AI कैंपस को इंट्रोड्यूस करते हैं।
1: सो जैसे कि आज के टाइम में प्रैक्टिकल लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट हो गई है बच्चों के लिए, तो यूनिवर्सिटी में क्या ये चीज है कि इंटर्नशिप्स हो गई, प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया, वर्कशॉप्स, क्या इस चीज का एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी में?
0: बिल्कुल अंकिता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे कि हम लोग जितने भी रन प्रोग्राम रन कर रहे हैं दे आर द इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोग्राम्स, और इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, वो अपने आप लिए रेडी कर रही है उन बच्चों को जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अभी इंडस्ट्रीज में काफी इंडस्ट्रीज ने क्या किया, अपने यहीं पे सेंटर्स बना दिए, लाइक इनक्यूबेशन सेंटर्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे का क्या है कि अगर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारे बच्चे तो ही हैं, अगर BA के बच्चे के भी, आर्ट्स का बच्चा है, एक कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके पास एक बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है, वो इनक्यूबेशन सेंटर जाएगा, अपना आइडिया वहाँ पे शेयर करेगा, उस आइडिया पे वर्कआउट होगा, इंडस्ट्री उसमें हेल्प करेगी, NIIM यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट उसमें हेल्प करेगी, और अपने उस आइडिया से वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। जॉब्स के लिए लोग पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी उनको फोकस्ड है। और इंटर्नशिप की जो बात करी वो तो एक बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं हर डिपार्टमेंट में तो वो कंपनीज अपने बच्चों के लिए रेडी कर रही हैं, तो इंटर्नशिप तो बहुत ईजी काम है, कोई बड़ी बात नहीं है।
1: सो जो इस साल अब एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, आप उनको एक ऐसी क्या स्पेसिफिक करियर ऑप्शन या फिर क्या स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहें?
0: देखिए अंकिता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आज के टाइम में 12th जब एक माइलस्टोन उन्होंने कवर किया है उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन चूज करते हुए मींस जो ग्रेजुएशन उसने चूज करी है वही उसका एक करियर होता है। लाइक आपने अगर मास कम्युनिकेशन चूज किया तो नेचुरल है आप जर्नलिस्ट हैं, आप PRO हैं, सेम थिंग आप इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो आप एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, लाइक लॉ आप लीगल एडवाइजर्स या फिर एडवोकेट्स हैं, एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, ऐसे ही आपके पास होटल मैनेजमेंट में खुद का सेल्फ बिजनेस है या फिर आप मैनेजर हैं या आपका अपना हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, बहुत सारी चीजें हैं, मींस जो भी आप कोर्स चूज करते हैं वो आपका एक करियर ऑप्शन बनता है। मेरी एडवाइस सभी बच्चों से यही है।

0: कि आपका अपने अंदर का स्किल देखें, उस स्किल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखें कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सोशल जो सोशल एक्टिविटीज में जब पार्टिसिपेट होते हैं या हमारा जो समाज है वो बच्चों के ऊपर दबाव बनाता है कि नहीं नीट ही करना है, नहीं जेईई मेन ही करना है। तो वहां पे मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अगर बच्चा उसके बाद भी हमारे पास आता है तो हम बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स उन बच्चों के उनके स्किल के अकॉर्डिंग रन करने के लिए विदाउट एनी कॉस्ट उनको सिखाते हैं वो चीजें हम, ताकि वो बच्चा लाइक अगर बीए का बच्चा है, घर वाले उसको ब्यूटी वेलनेस नहीं भेजना चाहते बट उसको मन है, तो वो ब्यूटी वेलनेस से आके यहाँ पे बच्चा स्किल इनहांस कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग की स्किल इनहांस कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल इनहांस कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की कर सकता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे वो स्किल इनहांस कर सकता है अपने कोर्स के साथ साथ में। और इसके लिए एनएलएम ऑलवेज तैयार रहती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं।
1: सर, आने वाले 10 से 15 सालों में आपका क्या एक विजन है यूनिवर्सिटी को लेके, आप किस रूप में देखते हैं यूनिवर्सिटी?
0: देखिए, एनएलएम यूनिवर्सिटी का फोकस ऑलरेडी इंडस्ट्री बेस ही रहा है और फ्यूचर में भी इंडस्ट्री बेस ही है, मेडिकल लाइन है या फिर इंजीनियरिंग लाइन है, और उन बच्चों को जो बहुत दूर तक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इवन साउथ इंडिया तक जो पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को एक लोकल एरिया में रूरल एरिया में वो चीजें सारे प्रोवाइड करना, विदेशों तक बच्चों को तैयार करना, ये पूरा फोकस है एनआईएलएम यूनिवर्सिटी का। स्किल बेस्ड एजुकेशन मेन फोकस है एनआईएलएम यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक ऐसा समय मैं देखने जा रहा हूँ जहाँ पे लोगों की लाइन होगी एडमिशन के लिए और फर्स्ट चॉइस एनआईएलएम यूनिवर्सिटी होगी।
1: तो जैसे सर अब न्यू एडमिशन्स आने वाले हैं, 12th के बाद बच्चे एडमिशन्स लेंगे अपना, तो क्या उनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी?
0: हाँ बिल्कुल अंकिता, देखिए गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप्स हैं एज इट इज वो यूनिवर्सिटी उनको रन करती है, लाइक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप हो गया, ओबीसी स्कॉलरशिप हो गया, पीडब्ल्यूडी स्कॉलरशिप हो गया, वीकर सेशन स्कॉलरशिप हो गया, ये स्कॉलरशिप जो है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बच्चों को प्रोवाइड करती है, हम उनके लिए बिल्कुल आगे हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। सेकंड जो यूनिवर्सिटीज भी खुद अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करती है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन स्कॉलरशिप है हमारे पास, हमारे पास अगर बात करें तो परसेंटेज स्कॉलरशिप जहाँ पे बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप है, गर्ल्स हैं गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जहाँ अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और कुछ सीएसआर फंड्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ पे बच्चे के पास कोई स्कॉलरशिप में नहीं बच्चा आ रहा है बट वो पढ़ना चाहता है, तो सीएसआर हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो सीएसआर फंड से बच्चों को पढ़ाती हैं, हम उनमें भी बच्चों की पूरी हेल्प करते हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हैं, कल्चर स्कॉलरशिप्स हैं, हर तरह की स्कॉलरशिप हम लोगों के पास अवेलेबल है, बताया कि जैसे कि अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ऑन ट्यूशन फीस।
1: सर जैसे कि यूनिवर्सिटी एक रूरल एरिया में है तो सर और ऐसा क्या है यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रही है?
0: देखिए अंकिता, सबसे बड़ा तो अगर हम बात करें आज के टाइम में बच्चे जो खासकर गर्ल्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अप टू 100% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट गर्ल्स के लिए एक कंसर्न और है, खासकर जो रूरल एरिया में गर्ल्स रहती है उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का, एनआईएलएम यूनिवर्सिटी ने उसको बहुत सहजता से लिया और अपने 15 रूट्स बनाए सराउंडिंग एरिया में जो कि 60 किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं, वो रूट्स मेन रोड से ना होते हुए विलेजेस के रूट से आते हैं और उन बच्चियों के लिए वो वरदान साबित हुए, जो बच्चियां कभी कॉलेज नहीं जा सकती थी वो बच्चियां हमारे बसों में बैठ के यहाँ तक पहुँचती हैं, लाइक जैसे जींद से बस चलती है हमारी वो बाया किठाना होके पहुँचती है, नरवाना से बसें चलती हैं वो किलायत होके पहुँचती है, उचाना से जो बस चलती है वो जाए लाइक छतर बालू होके यहाँ तक पहुँचती है, हमारी बस खरका संगतपुरा से चलती है, धनोरी से बस चलती है हमारी चीका से बस चलती है, अगोन से बस चलती है हमारी, इस्माइलाबाद ठोल से बस चलती है हमारी, कुरुक्षेत्र से बस चलती है, पेहवा से बस है हमारी, डांड से बस चलती है हमारी, करनाल से बस है हमारी, निसंग से बस है हमारी, और करनाल वाली बस को स्पेशली रूट जो बनाया वह निगदू होके कोल होके बनाया विलेज को कवर करते हुए, असन से हमारी बस चल रही है, पीलूखेड़ा से हमारी बस चल रही है, अलेवा होते हुए राजवंद होते हुए पहुँचती है, तो मीन्स कंसर्न ये रखा गया कि वो गांव जहाँ तक किसी न किसी वजह से हरियाणा रोडवेज नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ तक उन बच्चियों को लाने ले जाने में हम उनकी हेल्प करें और बसों में जो भीड़ है उससे उनको थोड़ा छुटकारा भी मिले, ये भी हमारा फोकस है बच्चों के। आजकल जो रूरल में फैमिलीज हैं उनका कंसर्न बच्चियों को लेकर बहुत फोकस्ड है कि वो बच्चियां पढ़ें बट उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट उनके आड़े हाथे आ जाता है, तो उसको हमने कवर करने की कोशिश करी अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और उसका काफ़ी अच्छा सहयोग बच्चों गाँव लोगों ने भी दिया और इस बार हमने कुछ बसें और परचेज करी हैं ताकि जहाँ पे फुल है ऑलरेडी बस वहाँ पे दूसरा बस चलाया जा सके।
1: आई वुड रियली से कि अपना

का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात शाम 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद आकाशवाणी रोहतक से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा

0: खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government today approved the construction of a 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
2: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 crore rupees। The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls and benefit the economy. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian. India has consistently called for early release and repatriation of civil prisoners, fishermen, along with their boats and missing Indian defence personnel from Pakistan's custody. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day Yatra scheduled to take place through the Nunwan, Pahalgam and Baltal routes under tight security. Akashwani today

0: unveiled its broadcasting house photo gallery Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hariprasad Chaurasia. The gallery features portraits of Bharat Ratna awardees including Vidushi M.S. Subbulakshmi, Ustad Bismillah Khan, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Ravi Shankar, Lata Mangeshkar and Dr. Bhupen Hazarika. During the event, a musical concert was organized in which a flute recital was performed by Pandit Rupak Kulkarni, Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi, and Director General of Akashwani and DD News, Rajiv Kumar Jain, were also present at the event. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterler Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In FIFA World Cup, England will face Democratic Republic of Congo, Belgium will meet Senegal, and USA will clash with Bosnia and Herzegovina in round of 32 matches tonight. And with that, we end this news bulletin.
1: चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेना प्रमुख बने। थल सेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का आधुनिकीकरण तेजी से किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति

0: निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अम्बाला के नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस राज्य की जनता को समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया, जिनमें 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत सरोवर तैयार करने पर 223 करोड़ रुपए की लागत आई है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव एवं विधायक शैली चौधरी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मंत्रीगण, विधायकों तथा जनता से जुड़े। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही है।
2: 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। बहुत सारे दल जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है।
1: उन्होंने कहा कि चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग का 1112 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो या बड़ागढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण, पिछले 11.5 वर्षों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए गए हैं।
2: पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का अवसर केवल नारायणगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं है बल्कि स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले उन्होंने चिकित्सक दिवस पर देश एवं प्रदेश के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्करों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत के महान चिकित्सक, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट प्रशासक एवं दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता डॉ. विधान चंद्र रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। उन्होंने कहा कि डॉ. रॉय का यह विचार कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा नारायणगढ़ से विकास कार्यों के उद्घाटन अवसर पर जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा व विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रहे। हिसार जिले में 4 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा कि हिसार में 11 अमृत सरोवर हैं जिनमें से एक अब हांसी में चला गया है।
3: हिसार की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे अमृत सरोवर है वो टोटल वैसे पुराना हिसार के तो 11 थे, अभी हिसार क्योंकि हांसी अलग बन गया जब ये मंजूर हुए थे तो 11 थे। और इसी तरीके से अगर आज सके हिसार की बात करूं तो टोटल 4 जो सरोवर है उनका आज उद्घाटन विधिवत रूप से किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पूरे करते हुए हम लगातार प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों तथा पलवल के नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्वार कार्य के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने की। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि पलवल जिला के नागरिक अस्पताल को 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप प्रदान किया गया है।
4: सिविल हॉस्पिटल को 7 करोड़ रुपए की लागत से उसका रेनोवेशन हो या हमारे पहले किस प्रकार से तालाबें अब दब चुकी हैं गांवों में, लेकिन उसका सौंदर्यकरण करके उसको भव्य और दिव्य बनाने का काम नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कर रही है, उसको लेकर ही आज हमारे पलवल

0: लाभों को अमृत सरोवर योजना के माध्यम से भेजा जा रहा है।
1: अंबाला के धनौरा गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 4 वर्षीय मासूम निर्वैर की मौत के बाद वकील परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट वासु रंजन ने हरियाणा और पंजाब सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन को 30 दिनों के भीतर सभी खुले बोरवेल सुरक्षित रूप से बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखा है, क्योंकि खुले बोरवेल मासूम बच्चों की जान के लिए लगातार गंभीर खतरा बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थलसेना प्रमुख बने। थलसेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गीता संदेश।
3: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीता के 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 20 और उससे आगे की व्याख्या। कामस्तस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्यानियता स्वया। श्रोताओं इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृति के पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि प्रकृति कहते किसको हैं। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश देते हैं कि अपनी भिन्न भिन्न प्रकृति यानी कि स्वभाव से प्रेरित होकर अनेक कामनाओं के वशीभूत होने के कारण जिन मनुष्यों का ज्ञान हर चुका है वे मनुष्य विभिन्न नियमों का आश्रय लेकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देखिए इसमें एक वाक्य बड़ा सुंदर कहा है कि जिन मनुष्यों का ज्ञान हर चुका है। आप यह समझ लीजिए कि इच्छाओं पर नियंत्रण भी उसी मनुष्य का होता है जिसके पास विवेक होता है। विवेक से युक्त मनुष्य ही अपनी इच्छाओं अर्थात अपनी जो सांसारिक कामनाएं हैं जिनके पीछे हम भागते हैं उनका मर्दन कर सकता है। यदि मनुष्य के पास विवेक नहीं है अर्थात उचित सोचने एवं समझने की सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है तो यह संभव नहीं हो सकता कि वह अपनी इच्छाओं का मर्दन कर सके। जिस मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की ज़्यादा अपेक्षा होती है उनका विवेक इन्हीं सांसारिक ज्ञान के द्वारा हर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि होती है सांसारिक वस्तुओं में, अर्थात वे मनुष्य क्या होते हैं, विवेक रहित हो जाते हैं। वे ज्ञानी मनुष्य यथार्थ ज्ञान को यानी कि मैंने जो ज्ञानी भक्त का लक्षण पूर्व में बताया था, ज्ञान को जो है अपने यथार्थ लक्ष्य ईश्वर को उस सत्य को और तो और वह स्वयं अपने आप को भूल कर इतने अधिक विवेक शून्य हो जाते हैं कि सांसारिक भोगों के आकर्षण से उत्पन्न असंख्य इच्छाओं के जाल से पूर्णतः फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? देखिए एक मकड़ी होती है, वो अपना जाला स्वयं बुनती है और स्वयं ही उसमें फंस जाती है। यही मनुष्य के साथ होता है जब वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना कर्म करता है यानी कि अपना आराधन ईश्वरीय तत्व का करता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही विभिन्न देवताओं की आराधना करता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वभाव कैसे भिन्न भिन्न बनता है, तो इसका उत्तर है कि जो हमारे जन्म जन्मांतरों के किए गए कर्म हैं उन कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और इन्हीं संस्कारों से जो प्रकृति जनती है या उत्पन्न होती है उसी के कारण वैसा ही हमारी वही प्रकृति हमारा स्वभाव कहा जाता है और यह स्वभाव प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न होता है। आप समाज में देख लीजिए, दो व्यक्तियों का रूप एक हो सकता है, कार्य एक हो सकता है, परंतु कभी भी दो जीवों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। तो और आप सोच लीजिए, यदि कोई एक साथ दो बच्चे जन्म भी ले लें तो उनके भी स्वभाव में कहीं ना कहीं भिन्नता जरूर पाती है। उसी स्वभाव

भाव से अंतःकरण में भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तथा उन्हीं इच्छाओं से प्रेरित होकर के मनुष्य जो है भिन्न भिन्न देवताओं की आराधनाएं करता है। कोई किसी का लोक व्यवहार के लिए देख लीजिए कि जो है ज्योतिष इत्यादि विषयों से भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनेक अनेक देवताओं की आराधना होती है। अब आगे के दो श्लोकों में जो है बताया गया है कि जो विभिन्न देवताओं की पूजा का फल क्या है और वह कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय में आप समझ लीजिए। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चुतुम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेम विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त, यानी कि सकाम क्या होते हैं, जो किसी इच्छा से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना से मतलब समझ लीजिए कर्म करते हैं, और जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्ति की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति अचल बना देता हूँ, ये श्लोक का अर्थ है। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं भगवान, इस श्लोक में याम याम इस शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त, यानी कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, सकाम जो विभिन्न इच्छाओं के लिए भगवान का कर्म करते हैं, उसके निमित्त साधन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अनेक साधनों का आश्रय लेते हैं, वो तो होते हैं सकाम भक्त। एक होते हैं जो ज्ञानी भक्त का लक्षण पहले बताया था कि जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भगवान के यथार्थ स्वरूप को भी जान लेता है, उसके बाद जो जीव क्या होता है स्वाभाविक ही भगवान का कर्म करता है या भगवान के निमित्त आराधना इत्यादि करता है, परंतु उसमें उसकी कोई इच्छा जो होती है वो निहित नहीं होती कि मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, यानी कि उसे कहते हैं निष्काम भक्त। परंतु यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि सकाम भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, अर्थात किसी को पुत्र चाहिए तो किसी को धन चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, ऐसी असंख्य इच्छाएं वाले जो भक्त होते हैं असंख्य सकाम भक्त कहलाते हैं। ये सब की स्थिति है समाज की, तथा इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह सकाम भक्त या वह साधक जो होता है अपने मूल लक्ष्य को छोड़कर जिस भी देवता की पूजा करता है भगवान वहाँ पर अपना सामर्थ्य नहीं दिखाते, अपितु क्या करते हैं उस देवता के माध्यम से उसकी श्रद्धा को ही सुनिश्चित कर देते हैं, यानी कि उसी में उसकी श्रद्धा को सुदृढ़ कर देते हैं। इस श्लोक में यह शिक्षा दी गई है कि जो मनुष्य अपने लक्ष्य को छोड़कर अन्य लक्ष्यों के लिए जिन साधनों का आश्रय लेते हैं उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है, जिससे वह उन छोटे छोटे लक्ष्यों को तो प्राप्त कर लेता है परंतु अपने मूल लक्ष्य से दूर चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझिए। जैसे एक विद्यार्थी जो होता है वो UPSC की तैयारी करने वाला होता है, वो परीक्षा के लिए तैयारी करता है, परंतु वो क्या करता है बीच बीच में अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या करता है अन्य परीक्षाएं जो है उनको भी देता है, चाहे वह अन्य किसी भी मामले में हो, सर्विसेज में हो, इनकम टैक्स में इत्यादि में हो, परंतु उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, वो UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करना, परंतु वह परीक्षार्थी अपने स्वभाव के कारण अपने लक्ष्य को भूलकर अन्य विषय के रूप में छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करके खुश होता है। अब आगे श्लोक में देखिए, उसी श्लोक का जो है उत्तरार्ध है, ये उसको संपूर्ति करेगा। सत्या श्रद्धया युक्तस तस्याराधन मोहते लभते च ततः कामान मयिवे वैहितान हितान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो पुरुष होता है भक्त, जिस काम भक्त के पहले वर्णन कर चुके हैं, उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का, जिस भी देवता का पूजन करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब भगवान इस श्लोक में अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छानुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करता है, पूर्व श्लोक में बताया है, और उस देवता के प्रति जिसकी वह भक्ति या पूजन करता है या जिसके निमित्त वह कर्म करता है, यहाँ देवता समझ लीजिए लक्ष्य है, मैंने पहले भी बताया है, उसकी प्रेरणा देने वाले भगवान ही होते हैं। उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी प्रकार ये वर्णित किया है, अर्थात उस श्रद्धा के प्रेरक भगवान ही होते हैं और वही भगवान अन्य देवताओं के माध्यम से उस मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि वह सकाम भक्त है। यह सब भगवान की उदारता है, परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवता की उपासना से मेरा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिस तरह भगवान उदार होते हैं उसी तरह मनुष्य को भी उदार होना चाहिए। जब हमारे पास कोई सामर्थ्य हो जाए तो फिर जो है
हमें जो है प्रत्येक जीव मात्र के प्रति जिस प्रकार भगवान उदारता दिखा रहे हैं, हमें भी उदारता दिखानी चाहिए। क्यों? अब कहो कि आप भगवान करते हैं तो हम क्यों करें, क्योंकि भगवान स्वयं तो कहते हैं।

0: भगवान गीता में कि ममई वांसो जीवलोक है सर्वभूत सनातन है। जब जीव में भगवान का ही अंश है तो फिर जैसा भगवान का स्वभाव है उसी तरह करुणादायक स्वभाव हम लोगों का होना चाहिए। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 22 तक की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता।

अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सके जो मौसम समय परिस्थिति के साथ बहुत जरूरी है। इनके हमारे जितने भी किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, सारे बड़े अनुभवी हैं और उनके अनुभव के कारण ही जो है ये देश खाद्यान्न पदार्थों में मालामाल है। लेकिन फिर भी जो इतने विश्वविद्यालय है, अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इतने वैज्ञानिक हैं, ये जो हमारे किसान साथी जो अन्नदाता हैं, जो नए नए तरीके अपना रहे हैं, उन सब का अनुभव भी आपके बीच में लेकर आऊं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि जो हमारे किसान साथी है वैज्ञानिक तरीके से खेती करके कम लागत पर अधिक उत्पादन ले सके। बस ये चर्चा हमारे कार्यक्रम में है। फिर आज की जो बात है वो लैदी है, आज तो है एक तारीख, और एक तारीख ना आप चर्चा करा कि पूरे महीने में मैंने क्या करना है। ये आपने पता ही है कि योजना बहुत जरूरी है, बिना योजना के ना देश चल रहा है, ना चल रहा है घर, और खेती बाड़ी कहाँ चल रहेगी। तो इस वास्ते पूरे महीने मैंने के काम करने हैं उस पर चर्चा करेंगे, और भाई मौसम के बारे में तो बात करेंगे ही, वो जानकारी भी देंगे, और फिर मनोरंजन तो हो ही होगा। तो बात कर लें कि क्या करना मैंने इस महीने में, बात आएगी धान की, क्योंकि धान की फसल मुख्य है इस समय है। तो किसने आप सबने पता है जो जो है पेद आपने चयन करनी होगी, फिर भी जो कह रहे धान की जो IR 64 है, HKR 46 है, HKR 47 है, या PR 106, या HKR 120 है, HKR 126, HKR 127, अयोध्या संकर धान उम्रेक, तो इन सब किस्मों की रोपाई आपने 7 जुलाई तक कर लेनी है। कंगी वाली किस्म जो जिसने गोविंदा या HKR 48, इसकी रोपाई आप जुलाई के आखिर तक कर सको, यानी मांगे चलो कि 31 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सके, इसमें आप समय रहेगा। और धान की बाकी किस्म है जिस तरह में जो लंबी है बासमती है, या चौड़ी बासमती है, CSR 30 है, बासमती 170 है, एक बोरी बासमती भी है, कोई सी भी हो, जो इनकी रजाई जो हम थोड़ी और देर तक कर सकें।

तो पाई खातर जो मेन बात ध्यान रखनी है, मुख्य मुख्य बातें वो कि जो आपके प्योद हो कम से कम 25-30 दिन प्राणी हो, नहीं है कि आपने रुपाई करनी है 10 दिन पानी प्योद जाओ आप, तो इसका ख्याल रखना। एक ध्यान रखना आपने कि आप जब रुपाई करोगे तो कतारों में जो है 20 सेंटीमीटर का फर्क हो और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर का फर्क हो। जो देहतर उपाय करेंगे उसमें थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, ओठा जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर की होगी, इसके लिए आपने ख्याल रखना है। और एक बात और जब बार बार चर्चा करा कि एक जगह पर आपने कम से कम 2-3 पेड़ लाने हैं, आपके जो मजदूर हैं वह कई बार के करें तोड़ तोड़ में काम ग्रेन खतर एक पेड़ा लेते हैं भी, एक पेड़ डाल रहे किसी कारण से नहीं रहा तो आपका जो है फसल कम होगी। जब 2-3 पेड़ होंगे, एक आधा पेड़ा मर गया तो बाकी जो है एक पेड़ा 2 पेड़ बचे वो चल जाएंगे। तो इस वास्ते इस बात का ध्यान रखना कि कम से कम 2-3 पेड़ जो है पौधे आपने एक जगह लाने हैं। एक बात का ध्यान रखियू, जो गहराई में बड़ी दिक्कत हो, कई बार सोचा भाई जितनी गहरी लावेंगे उतनी मजबूत होगी, गहराई भी 2-3 सेंटीमीटर बहुत है, घड़ी जो आप गहराई कर दोगे तो उसने उसमें समय लगेगा, खाद ज्यादा मांगेगी, पानी ज्यादा मांगेगी, ये कहने कहीं ना नुकसान नुकसान है उसका। तो इस वास्ते जो गहराई है वो भी आपने 2-3 सेंटीमीटर तक लेनी है। तो इस बात का आप ख्याल रखोगे। और जो मध्यम आकार की है, बोनी किस्म में कह लो या मध्यम काट की कह लो या संकेदान इनकी कह लो, इनमें आपने जब भी पौधे लाने हैं वो कम से कम 3 या 4 लाने हैं, इसका ख्याल रखना आपने। यह बात तो आपने करी दान की। फिर बात कर लेता जो थोड़ी सी बाजरे के बारे में, क्योंकि पता है आपने कि बाजरे की मांग जो है दिन पर दिन बढ़ती जाने लग रही है। और आपने पता है जब तय एक महामारी आई थी कोरोना, तो उस समय बाजरा के गुण आपने पहचान लिए थे, पूरे विश्व में बाजरे की मांग बढ़ी थी जिन्हें आप मोटा अनाज कहते हैं। और 2023 तो मोटा अनाज वर्ष भी मनाया गया था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यूएनओ के द्वारा भी। तो इस वास्ते बाजरा की भी मुख्य किस्म हो गई है। तो जो संकर बाजरी किस्म है वो आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो है HHB50, एक है HHB60, एक HHB94, HHB67 या जो किस्म है अटका बड़े संशोधित है। उसमें आप कई साथी कहेंगे अभी पहला लाई थी उसका झाड़ बढ़िया नहीं आया, अब यह किस्म जो है दोबारा संशोधित करिए विश्वविद्यालय द्वारा, तो यानी अब यह बढ़िया निखर का आई है। एक HHB117 है, 146 है, 197, 216, 223 और 226, 272, 299, 311, ये सारी की सारी किस्म ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया। आप कोई सी एक किस्म ले सको, नहीं आपने सारी ले ली है भी इतनी बताई थी सारी ले लिया, कोई एक बढ़िया सी किस्म आप लेके आए और भाई जो है इसकी आप फसल ले सको। और बात रहेगी बिजाई की, तो हम जो 15 जुलाई तक इसकी बिजाई कर सकें, सब तक बढ़िया मौसम तो रहेगा ही हो, लेकिन जहां बरानी क्षेत्र है उठा थोड़ा सा आपने जो मानसून की पहली बरसात है तो लगभग सारी जगह आई गई होगी, जितोड़ नहीं आई थोड़ी मैं बाढ़ देख लियो, तो ओट है जो आपने क्या करना है कि थोड़ी जो पहला बरसात है थोड़ी सी उसकी ध्यान रख के आपने फिर इसकी बिजाई करनी है। एक बार ध्यान रखियो कि खेत ने 2-3 बार जोत के इन सुहाग करा दो, उससे क्या होगा कि जो भी घास फूस है सारा का सारा जो है खेत में खत्म हो जाएगा, नहीं तो आगे पहले फसल होगी पहले घास फूस हो गया, आप तो पानी या खाद दोगे तो अपने बाजरे की फसल ना ले जाएगा उसने घास फूस निकाल लोगी, भाई रोटी में रोटी थाली तो आप में ले जाए कोई और, तो आपकी थाली की रोटी आपने मिल जानी यदि आपका पेट भरेगा, जो आपकी थाली की रोटी कोई और ले गया, यही बात हो रहा है। घास फूस खरपतवार जो ये होंगे भाई सारा पानी सारा खातों में ले जाएंगे बाजार में की मिलेगा। तो इस वास्ते इसमें कोई भी आपने ढील नहीं बरतनी और कसम दिखाना कि 2-3 बार जो है अच्छी तरह करके उसमें सुहागा ला के ताकि

अब आप कहोगे भाई बीज तो बताओ कितना चाहिए, कितने बीज गिरा, तो बीज की जो बात आई वो आप एक किले में 8 किलो बीज अपने बोते हैं, 8 हो जाओ 8 हो जाओ लगभग नहीं तुम्हें 8 किलो बीज आप कम नहीं गणा करना, 8 8 किलो बीज जो है आप एक किले में ले सको। इसमें एक दिक्कत आएगी, थोड़ी से खरपतवार हैं वह थोड़ी सा अपने परेशान कर सके, तो आप वो तो लगातार कर रहे हैं भाई मक्की खेती कहीं नहीं होंगे, सबने पता है अभ्यास बात का नहीं कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना आपने कि खरपतवार है उनका प्रयोग जो वो खत्म करने वास्ते कल्टीवेटर है, व्हील हैंड है या खुरपे हैं कसोले हैं, इन जगह आप गुड़ाई कर दें, यूरी भी सीधे कीटनाशक का प्रयोग कर दें, आप कीटनाशक का प्रयोग पीछे तक करना है, पहले आपने इन तक जो है वो खरपतवार काट के अपनी फसल बचानी है। एक बात और ध्यान रखनी है कि बिजाई के एक दिन पीछे 400 ग्राम अल्टाजीन 50% घुलनशील पाउडर हम उसका मान के चलना, प्रति किलो शायद हम लेना है 250 लीटर पानी लेना है, गुड़ बनाना है और आपने छिड़काव कर देना है। जब आप कीटनाशक का प्रयोग करो तो उन्हें भी आपने वो खुरपा लिया तो भी जाएगा प्रयोग, जब आपने कीटनाशक का प्रयोग करना तो बता रहे हम कि 400 ग्राम जो है अल्ट्राजीन और 250 लीटर पानी में मिला के गोड़ बना के उसका छिड़काव आप कर देंगे, लगभग उससे 7 तरह की जो है खरपतवार खत्म हो जाएंगे। तो ये अपने ध्यान रखना है। अब जब बात हम सारी इतनी कर ही रहे हैं तो अपने एक बात बता दें कि एक ऐसा संपर्क सूत्र भी है जिसके माध्यम से आप अपनी जो है किसी से संबंधित कोई भी समस्या उसका समाधान आप सीधा फोन करके पास करें, और उसका नाम है किसान कॉल सेंटर, यानी 1551 ये नंबर है। अरे इसमें कोई झिझक की बात नहीं, जो आप पूछोगे आपने जवाब मिलेगा, जो विशेषज्ञ वहां होंगे आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ये नंबर जो एकदम निःशुल्क है, तो इस वास्ते आप बेझिझक इसका जो है इस विषय में अपनी कोई चर्चा करना चाहो किसी वैज्ञानिक से जो है वो कर सको। बात आएगी कि मतलब कल का जो कार्यक्रम है उसमें के विषय होंगे तो वह बताएंगे आपने, ताकि आप तैयार हो। वास्ते भी एक तो होगा कि गिया की वैज्ञानिक खेती किस तरह करा, दूसरा रहेगा कि जो मेरी हरी खाद है उसने किस तरह पा सही ढंग तक प्रयोग में लावा, उसकी उपयोगिता के रहेगी महत्व के रहेगा उस पर चर्चा करेंगे, और कुछ एक जो डांगरा में आमतौर पर जो बीमारी हो जाए खासकर इस मौसम में, ये आपने पता है कि मी शुरू हो जाएगा, ये तो गर्मी फिर मी तो जीव सा मौसम हो जाएगा, ये आप ये साढ़ है फिर सामना जगह सामना में फिर टूट कर आम बरसागा, तो जो मौसम है बार बार बदलागा, तो ऐसे में जो हमारे डांगर है उनमें बहुत सी बीमारी हो सके, तो कल यह चर्चा करेंगे आप कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारी हो सके और के आप उपाय कर सके। जब बात कल की है तो कल के मौसम की बात करना कि कल में भी हरियाणा में बहुत जगह जो है बरसात कतौड़ी थोड़ी सी तेज कतौड़ी बछोर अलकल की आनकी पूरी संभाल में है, तो इस मौसम में देख के आप जो अपने कल के कार्यक्रम में है खेती बाड़ी के वो देखियो वो तैयार करियो कि आपने क्या करना क्या नहीं, ऐसा ना हो कि कोई काम आपने मी में करना हो आप उसने करना शुरू कर दो, तो मौसम में बरसात की तो पूरी उम्मीद है, इसे ख्याल रखेंगे। फिर इब आपको भी गिरजाई भाई बात बात कर रहा ना कोई रागनी ना कोई आपका मनोरंजन, तो क्यों ना फिर आपने रागनी सुना दिया, सुनो

अभी बात कर लें कि जो साथी मूंगफली खेती करें, क्योंकि आपने पता है कि मूंगफली की मांग बहुत है और बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो मूंगफली की जो है फसल नहीं है, तो मूंगफली की बिजाई भी हम जो है इस महीने के 20 तक लगभग 15 जुलाई तक आप मूंगफली की जो है फसल की बिजाई कर सकें। अब बात अभी किस्म कौन कौन सी है अभी, तो किस्म में तो पंजाब मूंगफली नंबर 1 है, MH4 है, इसकी हम बिजाई कर सकें और इसकी जो बिजाई है हम जो केला विधि से करेंगे, खुड्डा में जो है 5 सेंटीमीटर गहराई में डालेंगे। जितोर तक पंजाब मूंगफली 1 की बात है उस खाते में 24 किलोग्राम और दूसरी हमने MH4 का है उस खातर 32 किलोग्राम जो है गिरी 1 किलो में चाहिएगी। हटके फिर मान लिया नहीं ध्यान रहा कि जो साथी पंजाब मूंगफली नंबर 1 की बिजाई करेंगे तो उसने 1 किलो में 34 किलो जो है गिरी चाहिएगी और जो साथी MH4 की बिजाई करेंगे उसने जो है 1 किलो वास्ते 32 किलो गिरी बहुत है। अब बोलते हैं पहले एक बात ख्याल रखना पड़ा कि जो गिरी है वो एकदम स्वस्थ भी एक नहीं है, कभी आप लगातार ले रहे हैं भाई अपने गिरी ले ली और भाई चलो काम शुरू कर दिया, कोई खराब भी हो सके, किसी और कारण कोई और दिक्कत हो सके, तो कोशिश करियो वो बाहर काट दो। लेकिन फिर भी एक बात का ख्याल रखना कि बीज उपचार बहुत जरूरी है उसका, जो अपनी बढ़िया स्वस्थ गिरी होंगी साफ सुथरी जिसमें कोई दाग नहीं होगा कदी की कोई काली नहीं होगी ऐसी कोई नहीं होगी, तो अपने करने के उन गिरियां का मना कैप्टन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसका उपचार करना है, इस बात का विशेष अपने ख्याल रखना है ताकि जो किसी भी तरह की बीमारी तुम्हारी मूंगफली में ना आवे। और की करना एक दिक्कत क्या है, सफेद लट है या दिमक है या भी उसका, तो दिमक की तो पता आप बहुत समय तक प्रयोग कर रहे हो जो है कोरोपाई के पास है BCC, आप इसका प्रयोग कर सके या फिर क्लिनफास 25 CC, ये है यह 1 किलो के हिसाब से 1 किलो बीज के हिसाब से बुआई तय 4-5 घंटे पहला उसका उपचार कर दें और मूंगफली में 6 किलोग्राम तो नाइट्रोजन, यानी जब यूरिया की बात करोगे तो 13 किलो हो जाएगा, 20 किलोग्राम फास्फोरस और जो है 10 किलोग्राम पोटास। फास्फोरस की पूर्ति आप कर सकते सिंगल सुपर फास्फेट था वो होगा 125 किलो और जो पोटास की हम पूर्ति कर सकें म्यूटा

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसके अलावा आज का अनदाता कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने की राम राम।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इब्रो इंडिया, गांव तखाना, तरावड़ी।
1: पापा सुनो, आपने इब्रो इंडिया का पैगाम सुना?
2: कौन सा पैगाम बेटा, जरा सुनाओ तो।
1: लो फिर सुनो।

0: अब समझा, खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों का हितैषी विप्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
1: कागिन गुलाम संसार उस समय आपका अपना साथी गिरधारी और मेरे कंत कायचरण के सारे सुनाने वाली मीठी मीठी प्यार करी राम राम। साथी गुलाम संसार में हम रोज एक नया नया विषय लेकर आए, चर्चा करना वो सामाजिक बातें या कोई विशेष दिवस है ताकि हम उन्हें बातें सब याद रहे। वो तो मैं सब पता है, ज्ञानी ध्यानी है आप सारे, लेकिन फिर हमें याद कराना, मुझे कि फलाना दिन भी आज उसने भी याद कर लियो या फलाना दिन क्यों मनाया था उसने भी याद कर लियो या इस दिन का विशेष महत्व क्या है इसने भी याद कर लो। अब कहीं हमारे वैज्ञानिक हैं, कहीं हमारे जो है डॉक्टर हैं, कहीं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, पर्यावरणविद हैं, ये बहुत से ऐसे हमारे जो महान विभूतियां हैं जिनने विशेष काम अपने क्षेत्र में कराया और फिर जो विशेष काम कराया है तो फिर भाई उनको याद करना भी हमारा फर्ज है और उन तक प्रेरणा लेना भी हमारा फर्ज है। जरूरी बात बनेगी नहीं, क्योंकि जब उनकी हम चर्चा करेंगे जब ये समाज में बाकी लोग भी उस तरह तैयार होंगे। और जब उनकी चर्चा नहीं होगी, किसी ने पता ही नहीं होगा तो भाई कौन तो तैयार होगा और कौन नहीं तैयार होगा। तो जरूरी है कि इस विषय में हम जो है

एक कोई ना कोई जुड़ लेगा। मतलब आज जो हम चर्चा करेंगे सब तपन तो यह करते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, अब सुन भी क्यों होंगे, डॉक्टर का तो और मानस के जीवन में महत्व है। डॉक्टर नहीं कहते कि भगवान का दूसरा रूप है, नहीं कहते हैं कि भगवान ने हम पैदा कर दिए भाई, उस पर इच्छा जितनी भी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल है डॉक्टर ने करनी हुआ है, कोई भी थोड़ी सी दिक्कत हो हम पर डॉक्टर भाग गए, बिना डॉक्टर हो तो भाई मानस वक्त पर न जा ले। तो इस वास्ते जो आज यानी 1 जुलाई ये भी एक विशेष दिवस है, इसने हम बोलना राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। और ये जो ये दिन है, एक देश के महान चिकित्सक जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिसे हम डॉक्टर बीसी राय भी कहते हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में मनावा। इस दिन का जो विशेष मनाने का कारण है तो इसलिए है कि हम जो है जितने भी चिकित्सा क्षेत्र में हमारे डॉक्टर साथी लगे हैं उनके जो अमूल्य योगदान है, उनके जो समाज के प्रति जो सेवा है, उनके जो प्रयास हैं, उनने जो मरीजों को बचाने में जान बचाने की जो कोशिश करी है, अथक प्रयास में लगे हैं, ये उनके सम्मान मनाया जाए। हम उनको ये कहते हैं कि भी आपके कारण हमारा जीवन चल रहा है। दिन ने दूसरा रूप कह दिया भगवान का कि एक ने जन्म दिया और एक ने जीवन आगे चलाया। बात आएगी कि मनाया कब था पहली बार, तो पहली बार मनाया था यू 1 जुलाई 1991 ने, क्योंकि जो हमारे महान चिकित्सक हैं जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ। और देख कमाल की बात, 1 जुलाई 1962 में उनका देहांत हुआ, यानी जन्मदिन भी 1 जुलाई और उनकी जो पुण्यतिथि है वह भी 1 जुलाई। और उन्होंने 1961 में उनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न उस तरह सम्मानित किया गया था। तो अगर हम दिल से चाहते हैं कि मैं उन डॉक्टरों को हम जो है अपने श्रद्धा समर्पित करें तो हमको ये दिन याद रखना पड़ेगा 1 जुलाई का। और चीज चिकित्सा पद्धति की बात करा तो भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया, वो आयुष का क्षेत्र हो गया। और ये जो है हमारे और बात रही थीम की, तो क्या थीम उसका है, तो भाई इस थीम का तो यही है कि जीवन बचाओ। और जीवन बचेगा जब आप जो है हमारे जो डॉक्टर हैं वो सच्चे दिल से जो सेवा कर रहे हैं हम उनसे प्रेरणा लें, उनके जो सिद्धांत है उनको मान लें। लेकिन उसे क्या लगा एक बात और जोड़ दिया, भाई डॉक्टर पर जानता पहले भी एक काम हो रहा है, अपना जो जीवन शैली है उसने सुधार लें। नहीं उन पर ही बैठना, अपने उनके भरोसे बैठना है भी। आप कोशिश तो ये करें कि आपकी जीवन शैली है, खाना पीना जो है, सोना घूमना जो भी है, आपका सोच, आपकी सोच बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार आप खाओ तो बहुत बढ़िया लेकिन सोच बड़ी बेकार हो, वो सोच भी आपने मानसिक रूप से बीमार कर देगी। और जो मानस मानसिक रूप से बीमार हो गया नहीं उसका कोई इलाज नहीं होता फिर। तो आपने सोच बढ़िया रखनी है, खाना पीना बढ़िया रखना है, यानी ये कह ले कि जीवन शैली चाहे वो शारीरिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो नैतिक रूप से वो एकदम बढ़िया हो, तो फिर आपके जीवन का मजा ही कुछ हो जाए।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए और प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
6: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
5: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
6: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
7: पापा सुनो, आपने इग्नो इंडिया का पैगाम सुना?
8: कौन सा पैगाम बेटा, जरा सुनाओ तो।
7: मैं फिर सुनूं।

0: समझा। खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों का हितैषी विप्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
1: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
2: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
1: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
2: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
2: 8708903436।
3: और एक बार फिर कार्यक्रम ग्राम संसार में आपका स्वागत। मैं आपका अपना साथी गिरधारी। तो वह तो बात थी कि जो हमारे डॉक्टर हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कितना उनके योगदान है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन हमने क्या नहीं कि हर मानुष का जीवन में बहुत महत्व है। अब देखिए, मान लें आप तक संदेश भेजने हो, आप तक चिट्ठी ओरानी हो भी आ, तो चलो आप मेल भी आएगी, आप व्हाट्सएप भी आ गए, फेसबुक भी आएगी। एक समय था कुछ भी नहीं था यूं, फिर तो चिट्ठी थी। या चिट्ठी का महत्व आपने पता है, कितनी कितनी चिट्ठी जो है लिखी जाए थी। अरे भाई, चिट्ठियों में गाने भी बन गए, चिट्ठियों में फिल्म तक बन गई। तो उस चिट्ठी में पहुँचाने वाला जो था आप तक, वो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो दोपहरी में भी गलियों में साइकिल पर घूम घूम कर आप तक पहुंचे करा था, उसको याद करना, उसका सम्मान भी बहुत जरूरी है। और उसी के याद में जितने खराब मौसम है, गर्मी हो, जो है ज्यादा हो, मीह आ रहा हो, लू पड़ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बिना थके, बिना संकोच करे, बिना घबराए आपके घर तक पहुंचा था संदेश लेकर। तो वो है हमारा जो है डाक कर्मचारी। हम उसमें देख के कई बार घर तक पानी तक नहीं पूछते, लेकिन वो आपके घर तक पहुंचे, उसमें हो सके आपकी जो है कोई नौकरी का पत्र हो और कोई खुशी की खबर हो, कुछ भी हो सके, लेकिन वो बिना मौसम के देख के ही आप तक पहुंचे। तो आज जो है हम जो है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनावा, ताकि हम उन सब साथियों याद कर सके जो अपना पूरा मन से, तन से, जो दिल से आप तक पहुंचे। तो उनके हम दिल से सम्मान कर सकें, उनका समर्पण, उनकी मेहनत को हम जो है याद कर सकें। तो उसी लिए जो है आज 1 जुलाई ने हम जो है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनावा। ये बात रहे कि उद्देश्य क्या है इसका। देखो, आप तो बड़े बड़े लोग बैठ जो बड़े साधन हैं, दूर दराज तक आज भी, हम तो एक बड़े संपन्न एरिया में बैठे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक यह सुविधा नहीं है, जहाँ तक लोगों के पास टेलीफोन भी नहीं है, व्हाट्सएप की बातें छोड़ दो, मोबाइल नहीं है, बहुत ना पे आप पर स्मार्ट मोबाइल है, उन पर बटन वाले भी नहीं होंगे लगता है। तो उन तक भी वो कर्मचारी अपना जो है मेहनत ला कर वो सारे संदेश पहुँचाए काम है, चिट्ठी पहुँचाए काम है। तो उन दूर दराज क्षेत्रों में जाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो महानगर तक जोड़ने वाले कर्मचारी हैं, जो आम आदमी तक पहुंचने वाले कर्मचारी हैं, उनको हम जो है सम्मान देने के लिए ये दिन मनावा। और है ही बहुत जरूरी, हम उनकी मेहनत दिखती को नहीं, लेकिन जितनी मेहनत उनकी है हम तो आसपास है ही थोड़ी भी। फिर जिस तरह से समय बदला, इसके अलावा ने जो बाकी साथी भी जोड़े हैं, जो पार्सल दे काम है, जो बचत योजनाओं के लिए भी आपके पास है दाखिलने में, देखें समाज सेवी जी ने बोल दें छोटी कापी आरडी कापी खोल दें, आप उसमें 500 रुपये महीना या 100 रुपये महीना जमा कराओ, और फिर 5-6 साल में नीले से पीसी ले लो। ये भाई डाक कर्मचारी ये काम भी करें, ताकि आप जो है आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, आपके जो वित्तीय असर तभी उसके, आप तो रोज दाखिलने में उतर जाओगे भाई, तो बेचारे आई में नाम है पीछे ले जाते, तो इस वास्ते भी नहीं याद करें। और इससे पहले भी उनकी जो है बहुत सी जो है सेवाएं आप तक पहुंचे। और डाक खाना है, पिन है, पिन कोड है, और पिन कोड के साथ हमारा कर्मचारी है, बचत योजनाएं हैं, आपने पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो आपके घर तक पहुंचे और आपने बताया कि भाई फलानी योजना रही है, भाई पीपीएफ खुलवा लो या सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा लो, कितनी योजनाएं बताना अब तक, उसका भला सो कोई फायदा है ना। वो ये चाह रहा है कि इस देश का हर छोटा नागरिक भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए हमारा सम्मान, हमें श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। तो आज का दिन है उन्हीं के लिए है कि हम उनको दिल से सम्मान करते हैं, कितनी लगन मेहनत हर मौसम में आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो एक बार फिर उन सब साथियों को जो आपकी सेवा में, हम यहाँ से नमन करते हैं। अरे भाई, ये बात आएगी कि आपने एक रागनी और सुना दिया है नहीं, न सुनो फिर।

ਹੰਕਾਰ ਮਚਾਇਆ ਔਰ ਦਿਆ ਪਵਨ ਨੇ ਝੋਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ।

0: समझा। खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों का हितैषी विप्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इब्रो इंडिया गांव तखाना तरावड़ी।
2: इसके अलावा आज अग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने के दावे की राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एचआईवी और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, एचआईवी और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुं सुदर्शन।
8: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
9: आइए सुनते हैं फिल्म बाजीगर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं अमजद परवेज को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए अब सुनते हैं गुलाम अली को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

श्रोताओ, आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फिल्म हीर रांझा के बारे में। हीर रांझा वो फिल्म जिसे बनाया था चेतन आनंद ने, और अगर बात करें तो इसकी पटकथा भी चेतन आनंद ने ही लिखी थी। और ये जो कहानी ये थी बारिश शाह की प्रसिद्ध कहानी हीर रांझा का जो किस्सा मशहूर है उसके बारे में। और इस फिल्म के जो संवाद लिखे थे वो लिखे थे कैफी आजमी साहब ने। और संवाद क्या लिखे थे, बस कमाल किया था, क्योंकि जो पूरी की पूरी फिल्म ये है ये शायरी में है। एक एक जो डायलॉग है वो शायरी में है, उसका जवाब भी शायरी में ही है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के ये गीत के साथ

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोताओं, हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था इस फिल्म का, हिमालय फिल्म्स के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में राजकुमार और प्रिया राजवंश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, यानी हीर और रांझा की भूमिकाएं निभाई थी। कथावाचक जिसने इसकी कथा को अपनी आवाज़ में आगे बढ़ाया, चेतन आनंद इसके कथावाचक बने थे, यानी उन्होंने ही ये पटकथा भी लिखी थी, निर्देशन भी किया था। संपादन इस फिल्म का जादव राव ने किया था। इस फिल्म का जो बेहद हम कहें कि आकर्षक संगीत मदन मोहन साहब ने तैयार किया था और कैफी आजमी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। 1970 की ये जो फिल्म 142 मिनट की ये फिल्म थी और जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो चारों तरफ इसने अपनी धाक जमा ली थी और उस जमाने की बेहद सुपरहिट फिल्म ये रही। अब आइए सुनते हैं इसका ये गीत।

और श्रोताओं, इस फिल्म में अगर हम बात करें मुख्य कलाकार राजकुमार प्रिया राजवंश प्राण, जिन्होंने छोटे चौधरी की भूमिका निभाई थी, पृथ्वीराज कपूर जो राजा बने थे, अजीत जयंत जीवन, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, अचला सचदेवा, तबस्सुम डीके सप्रू और टुनटुन जो अल्लाह रखी की भूमिका जिन्होंने निभाई थी। बेहद सधे हुए अभिनय के साथ ये फिल्म बनी थी और इसका जो संगीत है वो आज तक अमर है। अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत।

श्वेता, अगर फिल्म हीर रांझा की कहानी के बारे में हम बात करें तो जो रांझा है जिसका पात्र निभाया है राजकुमार साहब ने, और रांझा तख्त हजारा गांव का एक अल्हड़ सुंदर और लापरवाह युवक है। वो अपने में ही हमेशा मस्त रहता है। वो अपने साथ बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बहुत बड़े घर में रहता है। वो जो है जंग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा होता है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही होती है, लेकिन उसका जो परिवार है वो उसको रोकता है, क्योंकि तख्त हजारा और जंग के लोगों के बीच में सदियों से कट्टर दुश्मनी रही है और उनकी जो चेतावनी है वो उसको नज़रअंदाज कर देता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी में नृत्य करने के दौरान उसकी जो है एक मुलाकात एक आकर्षक युवती हीर से होती है, जिसकी भूमिका निभाई है प्रिया राजवंश ने। वो जंग के एक जमींदार की बेटी है और वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उससे कहता है कि जब तक चिनाब नदी बहती रहेगी वो उसके साथ रहेगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो इस गीत को हम आपको बता दें कि इस गीत की जो धुन तैयार की कैफी आजमी साहब ने, इसको यमन कल्याण राग में निबद्ध किया है।

श्रोता, हम बात कर रहे थे फिल्म हीर रांझा की कहानी के बारे में। जब हीर रांझा दोनों आपस में प्रेम करने लग जाते हैं तो बाद में हीर अपने माता पिता से उसे अपने यहाँ काम दिलवाने में मदद करती है ताकि वे रोज़ मिल सकें। वह नियमित रूप से रांझा के लिए खाना भी लेकर आती है। उनके बीच में जो है प्यार बढ़ जाता है और वह अपने प्यार का इजहार भी दोनों आपस में करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हीर भी ऐसा महसूस करती है जैसा वो उसके बारे में करता है। तो बाद में एक गाने के जरिए हीर बताती है कि वह भी उससे उतना ही प्रेम करती है जितना वो करता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुप्त रूप से मिलते रहते हैं और लेकिन हीर के जो चाचा हैं छोटे चौधरी, जिनका जो है जिनकी भूमिका प्राण साहब ने निभाई थी, वे वहाँ पर खेतों की तरफ आ धमकते हैं और एकदम से उसको देख लेते हैं। और लेकिन उसको ये ज़रा भी पसंद नहीं था क्योंकि उनकी अपनी उम्र में शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था कि किसी की भी शादी हो। वो जल भुन जाता था। ये कहानी हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

छोटे चौधरी यानी प्राण जब उनको खेतों में देख लेते हैं तो उससे रुका नहीं जाता और वो जल भुन जाता है। अब उसकी शारीरिक अक्षमताओं के कारण उसकी जो शादी नहीं हो सकी, क्योंकि उसके जो है पैर खराब थे, वो लंगड़ा कर चलते थे। लेकिन उसको जब भी किसी की शादी के बारे में बात चलती तो उसे अपने दिन याद आते और वो बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं होता था। जब वह लोगों को प्यार में पाता था और शादी करते हुए देखता था तो उसको एक जो सामान्य रूप से जो गुस्सा है वो गुस्सा उसको आता था। वह बगीचे में हीर और रांझे को गले मिलते हुए देखता है, ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझे के बारे में बताती, छोटी चौधरी उसके परिवार को उसके संबंध में बताती और भड़काते उनको। अगर हम बात करें ये जो फिल्म थी, इसको पूरी की पूरी एक आम बोलचाल के बजाय एक कविता यानी नज्म के रूप में इसको लिखा।

गया था। कैफी आज़मी साहब उस समय के बहुत मशहूर शायर थे और उन्होंने इस फिल्म को शानदार पद्य में इस फिल्म को रचा था और राजकुमार और प्रिया राजवंश ने इस काव्यात्मक संवादों को बहुत ही खूबसूरती और असरदार तरीके से पर्दे पर उतारा था। एक डायलॉग जब बोला जाता था तो दर्शक उनकी तरफ खींचे चले आते थे। राजकुमार का शानदार अभिनय इस फिल्म में देखने को मिला, उनकी जोड़ी को बेहद सराहा गया। राजकुमार के बोलने का जो खास अंदाज है और उनकी दमदार आवाज है वो फिल्म की जान थी। अब आइए सुनते हैं ये गीत।

तो इस फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो राजकुमार साहब की जो दमदार आवाज तो इस फिल्म की जान थी ही, मदन मोहन साहब का जो संगीत है वो भी इस फिल्म में बहुत कर्णप्रिय रहा और आकर्षण का केंद्र है। इस फिल्म के गाने आज भी सदाबहार माने जाते हैं और कहते हैं कि मदन मोहन साहब जिस फिल्म के लिए संगीत देते थे वो एक एक जो गाने के दो दो तीन तीन कंपोजिशन वो बनाकर निर्माता को देते थे, इसलिए उनका जो संगीत है वो बेहद आकर्षक होता था और मन को मोहने वाला होता था। चेतन आनंद ने इस फिल्म का जो निर्देशन है इतनी खूबसूरती से

किया कि हर जो सीन है वो अपने आप में ऐसा बन पड़ा है कि जो एकदम से दर्शक को खींच लेता है। उन्होंने पंजाब की इस लोककथा को बहुत ही भव्य और कलात्मक तरीके से पर्दे पर पेश किया और ये फिल्म इतनी सुंदर बनी कि अपनी बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी यानी छायांकन के लिए जल मिस्त्री को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस फिल्म को जो है इसके संगीत को भी पुरस्कृत किया गया और राजकुमार साहब को तो इसके लिए पुरस्कार मिला ही था। अब आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि की 8:45 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने

0: केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज

0: नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कहने के, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी

फिल्म पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

व्हाट्सएप संदेश भेजा है। मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गजान गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंटे। छोटा बाजार कुरुक्षेत्र थानेसर से श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग शर्मा, राघव शर्मा और तनु शर्मा। आपके साथ हैं पलक शर्मा और ये संदेश हमारे पास से आया है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रतीक गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बालासाहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पी बी कुलते। ये संदेश हमारे पास आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ का। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ी इस गीत को सुनना चाहते हैं तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम का ये गीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: शतो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। भूकंपोस्ट फुल चिचौली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज दिलशाद, नसीर बानोबी और बादशाह मुलानी। ये संदेश हमारे पास से पहुंचा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का। आप हैं बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है और ये आप हैं बड़ा बाम्बो सिपाही साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश निशा, कुमारी रेशमा, दीपाली और देवेन जी। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सपना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का ये संदेश हमारे पास आया है। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अधिकार से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। सीतामढ़ी बिहार से नूर महल महसोल से मुस्तरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। आप हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे और उनके परिवार के सभी सदस्य। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना इस गीत को सुनना चाहते हैं। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अधिकार का ये गाना।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल देता।

वाली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

आगे तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संबंध से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार मित्रगण और उनके परिवार के सदस्य हैं। गांव सातड़ी से ईश्वर दयाल काम्बोज लाजवंती काम्बोज भव्य काम्बोज अमित कुमार काम्बोज और पुनीत काम्बोज। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया और मयंक भाटिया। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर और मनु। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया और उनके साथ हैं। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकार विजय लक्ष्मी सावनकार राजेश और राकेश ऋषिता। दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का एक संदेश हमारे पास आया है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं जैन वाली मंदिर गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसना अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू मह खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति जिंदल संजीव बंटी और समस्त खुशदिल परिवार। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संबंध का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंगूर से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का। फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से मास्टर वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, जुनैद, जुबैर, मुकराम, नौमन, फुरकान, फाजिल और मोहम्मद जाकिर। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। आप हैं आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। शेरवानी स्कूल गजद्वारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंदालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंदालिया बरखा, योगेंद्र कुमार चिंदालिया, नरेंद्र कुमार चिंदालिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंगूर का ये गीत।

से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और आप हैं लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर भाई बागड़ी प्रभुलाल बागड़ी और बागड़ी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनोहर भाई बागड़ी मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण और फुंदरी भाई बागड़ी जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म हावड़ा ब्रिज का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गाइड से हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और इस गीत के लिए ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। बागपत से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया इस गीत को सुनना चाहते हैं। नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मारहरा दरवाजा एटा से नबीद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। ये संदेश हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का। आप हैं सांगली जिला से के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरण हुजरे और रेहान शेख। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। तो आप सभी के पसंद पर फिल्म गाइड का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हिना से हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश भेजा है गांव जाकोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से बाजार रोड मंगीशापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, लुबना पलक और यश मंसूरी। आप हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और ये संदेश हमारे पास आया है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवान, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशा ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीलों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और ये संदेश हमारे पास आया है बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम का। तो आइए सुनते हैं फिल्म हिना का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें हैं FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि की 11 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की

0: 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 km long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission, Grameen or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi.

101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर हम अपने कार्यक्रम लेकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक